0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई।

0: बदलता रहो।
1: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
2: Cadet College Jagbabad. अब फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल
3: और दाखिला टेस्ट का इनेकाद 12 अप्रैल 2026 को होगा। राबता 0333-733-1172।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
4: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
6: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। वल्लाती, और वो औरतें, तखाफून नुशूज़हुन्न, जिनकी सरकशी से तुम डरते हो। नुशूज़ क्या होता है? नुशूज़ का लफ्सी माना है नशाज़यन शुज़ु से उभरना, सर उठाना, बगावत और सरकशी पे उतर आना। तो वो औरतें जो सर उठाएं, यानी सर उठाएं से मुराद क्या है? शौहर की करें, उनसे बगावत करें, सरकशी करें, बिला वजह रूठ कर शौहर के घर से चली जाएं। नुशूज में ये भी आता है, यानी बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबब के शौहर से नाराज होकर मूड ऑफ करके बगैर इजाजत घर से निकल जाएं। जो तकब्बुर करें, शौहर को हकीर समझें, ये सब चीजें नुशूज में आती हैं। फिर इसी तरह नुशूज में शौहर के खास हक में खयानत भी आती है, यानी शौहर के हक अदा करने के लिए तैयार ना हो। जैसे वो हदीस में आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो ना आए तो सुबह तक फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। तो ये चीज भी नुशूज में आती है, यानी इस तरह भी शौहर की बात ना मानना, शौहर को करीब ना फटकने देना। फिर इसी तरह नुशूज में क्या आता है कि शौहर के अलावा दूसरे मर्द से दिलचस्पी रखना, किसी और मर्द से दोस्ती रखना, जिसमें फिर हदें भी फलांग जाना, ये सब चीजें भी नुशूज में आती हैं। तखाफूना, तुम डरते हो, नुशूज़हुन्ना, उनके नुशूज से, उनकी सरकशी और बगावत से, उनके बात न मानने से। तो क्या करो? क्योंकि अल्लाह ताला ने घर की जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जरा इमेजिन

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: माँ खाधो गरम करे थी बैठा।
3: बुध थकल थकल पी लगी घड़ी खरीदा
2: तहां जो पुट सुमई न थो पूरी रात माँ तक खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा।
3: तू हाल वे माँ अच्छा तू हाल तू

0: हे वट एड़ियूं शयूं खांदी कर सेहत ठीक रहंदी
1: तव्हां खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी त मां कंहिं खाईंदमि
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पीअण वारी माउ जी बेहतरीन ग़िज़ा भाउ ऐं ॿार ॿिन्ही जो हक़ आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
7: yeah!

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: It's 10 a.m. This time check is blocked.
2: अब फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख
3: 7/3/1172।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: मई 2025 जी जंग का ओचितो ईंदड़ जंग न हुई। माज़ी में भी दुश्मन पाकिस्तान ते बेबुनियाद हथ ठोकिया, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कई, पर हक की जंग में भारतीय जहारत जो मुंह तोड़ जवाब दिनो पो। पाकिस्तान की दुश्मनी के हर भेरे शिकस्त जो मुंह दिसण पो। अमरीश ऑपरेशन बनाण मखसूस के एक साल मुकम्मल थियण ते जीएचक्यू में मनकद खास तकरीब के खिताब कन्दे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो त दुश्मन जानी वाणी पाकिस्तान खिलाफ अगते अग्राई जा असर ए काई खतरनाक ए तकलीफ दिन हूं। भारत जो ख्वाब आ त पाकिस्तान के अस्करी जहारत ए सफारती अकेलाई जो निशानो बढ़ाए, खिते में ताकत जो तवाजुन तब्दील करे। यो ख्वाब उन कद ए सलाहियत का घणो वधीक आहे, जो पाकिस्तान कदें भी कामयाब थे डींदो। फतेह मिजारन ए पाक फिजा के शाहिनन दुश्मन के छवी का वधीक फौजी हदफन के कामयाबी से निशानो बढ़ाओ। अवाम ए कौमी क्यादत जो पैगाम आए त मुल्की खुदमुख्तियारी सरहदी सलामत ए कौमी वकार से को भी छा कबूल ना। भारत जंग के नतीजे में थियल जानी ए माली नुकसान की कीमत ईंदड़ वक्त तई अदा कन्द रहो।

0: just wait for our response.
1: Pakistan, Hamesha Zindabad.
2: फख जी जंग में भारत जी प्रतनाक शिकस्त एक साल मुकम्मल अज समूरे मुल्क में फतेह जो जश्न मल्हायो पियो वञे जीएच रावलपिंडी में शानदार तकरीब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज एंड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में मेहमान खास तौर शिरकत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के शहीद यादगार से हाजिरी गुलदस्तो रखो पियो ए फातह खानी कई आईएसपीआर पारा जारी कल बयान में छवे बाद कौम की हिमायत से हथियारबंद फौज सभी अंदरूनी बार इंटेलिजन के मुंह डेण लाइ मुकम्मल तौर से तैयार है जंग में फतेह हथियारबंद फौजन की तैयारी जहा पेशेवराना सलाह जो सबूत है हकी जंग में कामयाबी आवाम जो हथियारबंद फौज के एतमाद के मजबूत किया है।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका रिज़ल्ट हासिल करण लाइ. वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी.
4: Yeah.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो.
3: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 AM सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते.
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन. GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी.
5: Yeah!

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 11 AM. This time check is brought to you by
2: Oseka.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: पाकिस्तान खिलाफ अगते अग्राई जा असर एंताई खतरनाक तकलीफ हुंदा। भारत जो ख्वाब है पाकिस्तान के अस्करी जारियत सफारती अकेला

निशानो बणाए खिते में ताकत जो तवाजुन तब्दील करे। यो ख्वाब उन कद ए सलाहियत का घणो वधीक आहे जेको पाकिस्तान कदें भी कामयाब थण डींदो। फतेह मिज़ारन ए पाक फिज़ाया जे शाहिनन दुश्मन जे 26 फौजी हदफन के कामयाबी सां निशानो बणायो। अवाम ए कौमी क़यादत जो पेकारी सरहदी सलाह

0: just wait for our response.
1: Pakistan hamesha zindabad.
2: हक जी जंग में भारत जी प्रतनाक शिकस्त एक साल मुकम्मल अज समूरे मुल्क में फतेह जो जश्न मल्हायो पियो वञे। जीएच रावलपिंडी में शानदार तकरीब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज एंड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में मेहमान खास तौर शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के शहीद की यादगार से हाजिरी गुलदस्तो रखियो पियो ए फातह खानी कई। आईएसपीआर पारा जारी थियल बयान में छह विवाद कौम की हिमायत से हथियारबंद फौज सभी अंदरूनी बार चर्जन के मुंह डेण लाइ मुकम्मल तौर से तैयार है। जंग में फतेह हथियारबंद फौज की तैयारी जहा ए पेशेवराना सलाह जो सबूत है। हक की जंग में कामयाबी आवाम जो हथियारबंद फौज के एतमाद के मजबूत किया है। भारत खिलाफ ऑपरेशन अमेरिका हक की कामयाबी के एक साल मुकम्मल थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कौम ए पाक फौज के वाधायूं। आसिफ जरदारी चो तो पाकिस्तान अमन पसंद रियासत है पर हर जारियत जो भरपूर जवाब डेण भी जानू था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क्यादत में पाक फौज दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब दिनों। भारत के गैर कानूनी कब्जे हेठ वलायल कश्मीर जो मसलो ठहराने मुताबिक हल थे घुर्जे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रख। वजीर आजम शहबाज शरीफ पैं पैगाम में है दुश्मन खिलाफ कामयाबी ते अल्लाह ताला जे बेशुमार निमतन ए एहसासन लाए सजदो करण जो दिन आए। अज असा उन अजम हिम्मत ए साबित कदमी के याद कयूं पिया जेका पाकिस्तान आजमाइश के वक्त में डेखारी दुश्मन के जबरदस्त शिकस्त डिनी। भारत खिलाफ हक की जंग में कामयाबी के एक साल मुकम्मल थे। पीपल्स पार्टी कराची की सीवीयू वट शानदार तकरीब। वे वजीर मुराद अली शाह खिताब करे जो तो पाकिस्तान हक की जंग में दुश्मन के इबरतनाक शिकस्त डनी। भारत सदाई पाकिस्तान से कूड़ा इल्जाम लगाई रो है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, खिते में अमन टोड़े इस्तेखाम चाहे तो। सदर आसिफ जरदारी, शेख बिरेंद्र भुट्टो चीन का मिजाइल टेक्नोलॉजी वरती। पाकिस्तान या मिजाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे कुछ ही इलाकन में भारत के शिकस्त डनी। भारत के पैंजन ही जहाजन से वो नाज हो, पाकिस्तान उ जहाज किराए तबाह कर छा। अज पाकिस्तान खिते जो अहम मुल्क बणज चुको है। अमेरिका हक में कामयाबी की खुशी में गवर्नर हाउस में भी शानदार तकरीब। भारत के वर्दनाक शिकस्त डींदड़ पाक फौज के भेटा पेश कई वही।

अकबर जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों कराची डॉक्टर्स जीएनसी आज खान जना अस्पताल ते रैली पाक फौज के भेटा पेश टंडू मोहम्मद खान में पुलिस जवानों पारा जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते रैली कढ़ी पई पनवाकुल में पाक फौज की हिमायत में रैली निकती खैरपुर में मेडिकल कॉलेज का सिविल अस्पताल से रैली कढ़ी वही लड़कणों में तालीम खाते पारा जंग में कामयाबी की खुशी में रैली कढ़ी वही पीरे जो गोठ में मुख्तलिफ स्कूलों के उस्तादन शागिर्दन ए शागिर्दान पारा रैलू कढ़ी वयूं भारत के इबरतनाक शिकस्त देने से पाक फौज के भेटा पेश कई वही हकवारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते सिंध जेलन में भी तकरीबू सेंट्रल जेल सखर में हकवारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते तकरीब जेल अमले या कैदन की शिरकत खैरपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में भारत के शिकस्त

0: चंदों का देखिए 7 नवंबर से हर पीर से जुमा रात 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: It's 11:15 AM.
2: This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
5: Yeah!

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मिलण जो हंधु हर छंछर ते सुबुह नाए खां शाम जो पंजे वगे ताईं।
1: के बाद उसका जवाब दे सकते हैं और जवाब देने के साथ साथ अपना एक फरमाइशी सॉन्ग भी लिख सकते हैं अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीकेंड भी बताया था। तो मैं आपका सॉन्ग प्ले करूंगी तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो जवाब था वो राइट है। ओके, सवाल के जवाब के साथ आपने गाना पसंद का भेजना है मुझे। और जो मुझे फेसबुक से सुनना चाहते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फेसबुक पे ज्वाइन करने के लिए आपने फेसबुक ऑन करना है, GFM88 का पेज आपने ओपन करना है। मेरे नाम का फ्लायर आपको दिख जाएगा संविता आरजे सना के नाम से। आओ बात करें मैं, तो बिना देर किए आओ बात करें और आओ बात करें। ओके, तो यहाँ पर सवाल मैं आपको बताती हूँ। सवाल मेरा ये कि आपने मुझे बताना है आज कि वो कौन सी चीज है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं पर उसे खाते नहीं है। वो कौन सी चीज है जिसे हम खरीदते हैं खाने के लिए पर हम उसे खाते नहीं है। तो आपने पता लगाना है और मुझे बताना है और अपने बताने के साथ साथ एक सॉन्ग का नाम भी जरूर लिख के भेजना है। तो अगर वो जवाब आपका ठीक होगा तो मैं सॉन्ग प्ले कर दूंगी। ओके जी, बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है, हमें किसने ज्वाइन किया है।

तो ये सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग फैजाले के बाद में सॉन्ग, जैसा कि आपने सुना बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, उनका न्यू न्यू सॉन्ग आया था, तो मैंने सोचा कोई भी सॉन्ग मैं सुनती हूँ तो हमेशा आप लोगों के साथ ही कोई भी नया सॉन्ग होता है जो मैं अकेले नहीं सुन रही होती। तो ऐसा ही आज भी है कि मैंने उनका सॉन्ग आपके साथ प्ले किया था।

तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग अभी तक उठे नहीं है, आप लोगों की अभी तक सुबह नहीं हुई, तो ऐसा ना करें, जल्दी जल्दी उठते हैं और टाइम कम रह जाता है हमारे पास बात करने के लिए। तो फिर आप लोग मुझे बोल रहे होते हैं कि यार अभी टाइम जो है बहुत कम है, आप सॉन्ग प्ले नहीं करती, तो आप लोगों की शिकायतें बढ़ जाती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के तरीके से, तो आपने क्या करना है, मुझे टाइमली ज्वाइन कर लेना है और टाइमली मुझसे बात कर लेनी है।

अच्छा जी, अब्दुल रजाक मुझे जवाब देते हुए कहते हैं कि सवाल का जवाब का आंसर है बर्फ। तो और आपने कोई सॉन्ग तो मुझे नहीं बताया, सॉन्ग आपका ठीक है, प्ले नहीं करूं तो समझेगा कि ठीक नहीं है। तो सॉन्ग का नाम मुझे जरूर बताया करें, अभी आपने मुझे जवाब दिया तो उसके सॉन्ग भी भेजें। अगर मैं प्ले कर दूं तो समझ जाइएगा कि ठीक है, और ना करूं तो समझिएगा ठीक नहीं है। ओके जी, जवाब के साथ आप मुझे सवाल का जो है कोई भी सॉन्ग जरूर भेजा करें, क्योंकि अगर सवाल का जवाब मुझे देते हैं तो फिर पता लगाने के लिए एक सॉन्ग भेजना जरूरी है, अगर मैं प्ले कर दूं। ठीक है जी, आप मुझे कोई भी सॉन्ग। और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हफीज, कहते हैं कि ईदगाह जनूबी बकर से, मोहम्मद हफीज उल रहमान मुल्तान से, गुली यासिन नाज वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप मोहम्मद हफीज, आपने मुझे ज्वाइन किया, अच्छा लगा कि आपने मुझे ज्वाइन किया, ऐसे आपने हमेशा मुझे संडे संडे ज्वाइन करते रहना है। और बात करें मैं होती हूँ आपके साथ पूरे पूरे दो घंटे के लिए, तो अगर आपने मेरा सवाल नहीं सुना तो मैं अपना सवाल अभी आपको रिपीट करते जाते हैं, फिर हम उसके बाद जाएंगे छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ। तो जी, मेरा सवाल ये था आपसे कि आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन उसे खाते नहीं है। हम उसे खाने के लिए तो जरूर खरीदते हैं पर हम उसे खाते नहीं है, तो पता लगाना है और मुझे बताना है कि वैसी कौन सी चीज़ है। तो पता लगाएं और

0: क्योंकि आज हम बहुत सारे सॉन्ग्स हमारे पास हैं मौजूद जो कि हम सुनने वाले हैं। अच्छा, हमारे पास एक मैसेज पे भी ज्वाइन करते हैं हमारे लिसनर, वो कहते हैं कि देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं शक्कर से सना जी क्या हाल है, अमजद अली खोरखनी वसान कॉटन रोड़ी, आपकी आवाज ही है जी, आपका आवाज ही है जी। क्या मतलब समझी नहीं मैं आपकी बात, आप दोबारा मुझे सही से लिख के बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझी, तो आप मुझे बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं, जब तक आप मुझे बताएं ताकि मैं समझूं आपका मैसेज। और जब तक हम यहाँ पर चलते हैं एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, लेकिन जैसे ही जाएंगे वैसे ही वापस आ जाएंगे और रहेगा मेरे साथ, कहीं जाएगा नहीं।
1: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: This program is brought to you by
4: Bankal Habib. Rishta Bharose Ka.
5: Ab aapki khubsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

तो जी वेलकम बैक वंस अगेन और यहाँ पर तो यकीन आपके सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगा होगा और ब्रेक के से हम लोग वापस आ गए हैं और वापस आने के बाद देखते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है, हमें कौन कौन ज्वाइन करता है और ये भी देख लेते हैं।

तो जी ये भी देख लेते हैं हमारे साथ मौजूद कौन कौन हैं और कौन हमें ज्वाइन करता है। हमें ज्वाइन करते हैं टॉम कादिर बटी जी। आप टॉम मेट्रियाडी सिवानगी। अच्छा जी, जरूर हम सॉन्ग सुनाएंगे आपका, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आपने सॉन्ग बताया तो एक जवाब का रिप्लाई भी कर देते तो क्या ही बात थी और पता चल जाता कि आपका जवाब ठीक है या नहीं। खैर, आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आए हैं और ऐसे कैसे हम आपको जाने दें। तो आपने मुझे ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। ऐसी आओ बात करें मैं, आपने हर संडे मुझे ज्वाइन करते रहना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ। आओ बात करें मैं तो जी जरूर सुनाएंगे आपके पसंद का सॉन्ग भी। और उसके अलावा देख लेते हैं कि हमारे साथ मशहूर अहमद हमें सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि आज समझिए सवाल का जवाब है चम्मच। और ओके जी, और जी जी जरूर, आपने मुझे सॉन्ग पहले ही बताया था, हमने आपका सॉन्ग प्ले कर दिया था। अभी भी जरा आपको कोई फरमाइश है जो कि फायजाली की आवाज के अलावा कोई सॉन्ग है तो वो भी आप मुझे टाइप करते हैं। जवाब ठीक होगा तो हम जरूर आपका सॉन्ग प्ले कर देंगे और ताकि आप समझ जाइएगा कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। अगर प्ले ना करें तो समझ जाएगा जवाब ठीक नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है वही दुन्नड़। वही दुन्नड़ कहते हैं जवाब बर्तन सॉन्ग। जवाब बर्तन सॉन्ग मेरा बाबू छेल छबीला मैं तो नाचूंगी। अच्छा जी, जरूर आपने जो सॉन्ग बताया है और अगर आपका जवाब ठीक होगा तो ये सॉन्ग प्ले हो जाएगा। आपने करना है लास्ट तक, एंड तक, मतलब वेट और देख लेते हैं कि आपका सॉन्ग प्ले हो जाएगा अगर आपका जवाब बिल्कुल

लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले क्यों ना हम लोग एक अलग से ओएसटी मैशअप सुने जो मेरी पसंद से हो। पहले हम वो सुनते हैं, उसके बाद सुनते हैं दिले उम्मीद तोड़ा है किसने। ओके जी, तो मैंने कर दिया प्ले और ये सॉन्ग आपको सुनने वाला है अभी। रहे मेरे साथ और कर दिया है सॉन्ग को मैंने प्ले, बहुत ही मजा आने वाला है। तो

तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग को स्टीमेशा और यकीन आप लोग को कभी बहुत अच्छा लगा होगा हमेशा। तो जी और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपको पता है कि अगर आप लोग उठ जाते हैं मुझे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं परेशानी हो रही होगी तो परेशानी तो होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या करना, फेसबुक सिंपल ऑन करनी है, GFM 88 का पेज आपने ओपन कर लेना है, मेरे नाम का प्यार आपको दिख जाता है, मेरा नाम प्यारा सा आपको दिख जाता है और उसके साथ मेरी प्यार से आवाज सुनने के साथ आपको देर के बगैर ही आपने मुझे कमेंट करना होता है कि भाई आप मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे सवाल को आपने सुन लिया है। अगर नहीं सुना है और जिसे मुझे अभी ज्वाइन किया है तो उसके लिए मैं अपना सवाल आपको रिपीट कर लेती हूँ। तो जी मेरा सवाल ये था आप लोगों को, सिर्फ जस्ट ये बताना था कि यार वो कौन सी चीजें जो हम खाने के लिए खरीदते तो हैं पर हम उसे खाते नहीं हैं, तो ये लगाना था पता और अभी तक आपने मुझे नहीं पता लगाया। और जिसने भी अभी तक जवाब दिया है, जिसके पसंद के अभी तक सॉन्ग प्ले नहीं हुए हैं तो उसका मतलब है उसका जवाब बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसा ही है ना, बिल्कुल अगर सवाल बिल्कुल ठीक होगा तो आपका यकीनन सॉन्ग भी हम जरूर प्ले कर देंगे। अच्छा जी यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें SMS पे किसने ज्वाइन किया है और कौन हमें SMS करता है। हमें ज्वाइन करते हैं सकर से याली मदद, आपका शो सुन रहे हैं, सदाकत हुसैन मीरानी साहब, टेलर मास्टर अली अकबर शेख एंड शौकत शेख बच्चल शाह मियानी सखर सही क्या नाम बताया था आपने, सदाकत हुसैन। कैसे हैं आप सदाकत हुसैन, और अच्छा लगा कि आपने मुझे ज्वाइन किया है लास्ट संडे की तरह आज भी, तो ऐसे ही आपने हर संडे मुझे ज्वाइन करते रहना है। आओ बात करें, मैं रहती हूँ मैं आपके साथ और आपका मेरा साथ 1 बजे से सुबह 11 बजे से सवेरे 1 बजे तक। 2 घंटे बहुत होते हैं बात करने में, लेकिन आप लोग तो बात ही नहीं कर रहे होते, आप लोग सब कुछ छुपा रहे होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ चुरा लूंगी, छुपा लूंगी, आपसे छीन लूंगी, तो ऐसा नहीं है जी, आप अपने घर में हैं, मैं अपने तो ऐसा ही होता है कि बस आप लोग बता देंगे तो थोड़ी खुशी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंदर से टूटे हुए लोग आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यानी कि मैं इतना तो अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, इतना तो समझदार आप खुद भी हैं, तो जी इतना तो नहीं करें ना। और हमारे साथ मौजूद हैं सकर से कहते हैं अजीम चन्ना फ्रॉम साले पर जवाब खाने वाला चम्मच प्ले किसी दर्द, कहते हैं कि जवाब खाने वाला चम्मच प्ले किसी दर्द मंद के काम आ किसी डूबते को डाल दे, सलाम सब सुनने वालों को। ओके जी वालेकुम सलाम, और यहाँ पर हम लोग सॉन्ग जरूर प्ले करेंगे आपका जो आपने मुझे बताया है, अगर आपका जवाब ठीक होगा तो रहेगा मेरे साथ, आपको वेट करना पड़ेगा ना पूरा ताकि सुनने को पता चल जाएगा आपके पसंद का सॉन्ग चला है कि नहीं है। तो इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कहते हैं विलेज गोड नबीदाद बमड़ो नारो से इमाम डिनो बमड़ो सवाल जो जवाब चम्मच यान प्लेट प्लीज प्ले शमन अली का करो वादा कब आलो, अच्छा कब आओगी करो वादा कब आओगी। ओके जी ओके जरूर जरूर, इतने सारे सॉन्ग्स हो गए हैं भाई राइट आंसर के साथ साथ तो प्ले करना तो अब बनते हैं, तो जरूर जरूर हम जरूर प्ले करेंगे।

लेकिन सॉन्ग सुनने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारे पास वैसे ही एक टाइम बहुत कम हो गया, 2-3 मिनट रह गए हैं न्यूज ब्रेक की तरफ जाने के लिए, क्योंकि अभी हम जाएंगे न्यूज ब्रेक की तरफ और न्यूज ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो वापस आके मैं कर दूंगी आप लोगों के पसंद पसंदीदा सॉन्ग। तो सुनने के लिए रहना पड़ेगा मेरे साथ और कहीं जाइएगा नहीं तो आपके सॉन्ग चल जाएंगे, आपकी जगह कोई और सुन लेगा, फिर आप बोलेंगे आपने हमारे सॉन्ग प्ले नहीं किया। तो रहना पड़ेगा मेरे साथ और मजे के सॉन्ग सुनने के लिए, क्योंकि देखिए ना सॉन्ग के अलावा अगर हम लोग सिर्फ सॉन्ग सुने तो भाई न्यूज का भी तो पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप लोगों से मेरे साथ रहते हैं तो ये चीजें तो मुझे पता लगानी पड़ेंगी ना भाई। तो जी एक और देख लेते हैं हमारे साथ कौन हमें ज्वाइन करता है। हमें ज्वाइन करते हैं SMS करते हुए, कहते हैं स्वीट सन्ना हम बर्तन खरीदते हैं और खाते नहीं हैं, आई वसीम। ओके आपने कोई सॉन्ग का नाम है तो वो भी शेयर कर दें, अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो हम आपका सॉन्ग भी साथ में प्ले कर सकते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो है ये सॉन्ग मतलब आपका जो जवाब है वो बिल्कुल ठीक था। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, कहती है मुस्कान बाजी प्लीज प्ले तावीज करे तुके मुखा वॉइस बाय फैजा अली की। ओके जी, लेकिन फैजा अली की आवाज में हम लोग एक सॉन्ग वैसे ही प्ले कर चुके हैं सिस्टर, आप अगर कोई और सिंगर का नाम है तो वो जरूर बता दें और साथ में मेरे सवाल का जवाब भी बता दें, क्योंकि अगर जवाब बताएंगी और मैं अगर वो प्ले करूंगी तो ये अंदाजा हो जाएगा आपको के और सुनने वालों को भी कि भाई आपका जवाब बिल्कुल ठीक था। तो जवाब भी जरूर दीजिए और अगर कोई और सॉन्ग है तो वो भी बता दें, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में हम लोग जरूर प्ले करेंगे फैजा अली की आवाज। तो जरूर हम लोग नेक्स्ट शो पे ये सॉन्ग प्ले करेंगे जो आपने मुझे बताया है। ओके कोई और सॉन्ग है तो मुझे जरूर बता दें और मोस्ट वेलकम है, हम लोग वो जरूर प्ले करेंगे। तो ऐसा ही है।

0: अच्छा, जब हम लोग न्यूज से वापस आएंगे, न्यूज से वापस आने के बाद यार मैं एक और अपना सवाल आप लोगों से पूछूंगी, इसका जवाब आपने मुझे देना है कि इसका हल मैं कैसे निकालूं। तो जी यहाँ पर टाइम हो गया है हमारे न्यूज ब्रेक के, जब जाने का वापस आएंगे, वापस आके करते हैं बाकी की बातें, तो रहिएगा मेरे साथ।
1: It's 12 PM. This time check is brought to you by
2: Michael Habib. Rishta Bharose Ka.
3: Moro. No.
4: Abhi Budhopya, GA Hyderabad Matyari, FM 91.6. Sindh Jo Awaaz.
5: Oh Pita Ja Pitai, Pita Te Vasei Noor Mujo To.
4: Sindh Jo Awaaz. Budhanda Raho.
1: It's 12 PM. This time check is brought to you by
2: Michael Habib. Rishta Bharose Ka.
6: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
7: की जंग हुई, फील्ड मार्शल सर आसिम मुनीर जो ऑपरेशन बैनर की कामयाबी के साल पूरे थे थे जीएचक्यू में कोर्ट हाल तकरीब के खिताब फील्ड मार्शल सर आसिम मुनीर चो तो हक वाली जंग 7 मई की विच वाई रात का 10 मई ते दुश्मन असि कौमी वकार के आजमाने की नाकाम कोशिश कई। मई 2025 की जंग का ओचितो ईंदड़ जंग न हुई, माजी में भी दुश्मन पाकिस्तान से बेबुनियाद हथ ठोकिया इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कई, पर हक की जंग में भारत जारियत की मुंह तोड़ जवाब दिनों पो। पाकिस्तान दुश्मन के हर भेरे शिकस्त जो मुंह दिसो पो। ऑपरेशन बनारस मरसूस के एक साल मुकम्मल थियण से जीएचक्यू में मुनद खास तकरीब के खिताब कन्दे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चो दुश्मन जानी वे तो पाकिस्तान खिलाफ अगत अगराई जा असर इनता ही खतरनाक ए तकलीफ दीदड़ हूं। भारत जो ख्वाब है तो पाकिस्तान की अस्करी जारियत ए सफारती अखिलाई जो निशानो बनाए, खिते में ताकत जो तवाजुन तब्दील करे। यो ख्वाब उन कद ए सलाहियत का घणो वधीक है, जो को पाकिस्तान कदें भी कामयाब थे न डी। फतेह मिसाइल शाहन दुश्मन के 26 का वधीक फौजी हथकन के कामयाबी से निशानो बढ़ाया। आवाम ए कौमी कयादत जो पैगाम है तो मुल्की खुदमुख्तियारी सरहदी सलामती ए कौमी वकार से को भी ठाह काबिले कबूल न है। भारत जंग नतीजे में थियल जानी ए माली नुकसान की कीमत ईंदड़ वक्त तई अदा कन्द रहन्दो।

0: जी जंग में भारत जी अवतनाक शिकस्त के एक साल मुकम्मल अज समूरे मुल्क में फतेह जश्न मल्हायो पियो वञे। रावलपिंडी में शानदार तकरीब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल में मेहमान खास तौर शिरकत, फील्ड मार्शल सिदास मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु एंड नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ शहीदन की यादगार से हाजिरी, गुलदस्तो रखियो ए फातिहखानी कई। आईएसपीआर पारा जारी कल बयान में है तो कौम की हिमायत से हथियारबंद फौज सभी अंदरूनी ए बाहरी चैलेंजन के मुंह डेण लाय मुकम्मल तौर से तैयार है। जंग में फतह हथियारबंद फौज की तैयारी चाह ए पेशावरानी सलाहत जो सबूत है। अखिली जंग में कामयाबी अवाम जो हथियारबंद फौज के एतमाद के मजबूत किया है। भारत खिलाफ ऑपरेशन मरकयात की कामयाबी के एक साल मुकम्मल थे सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम ए पाक फौज के वाधायू डी पन। सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान अमन पसंद रियासत है पर हर जारियत जो भरपूर जवाब डेण बजाणो था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क्यादत में पाक फौज दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब डनो। भारत के गैर कानूनी कब्जे हेठ वारल कश्मीर जो मसलो ठहराने मुताबिक हल थन घुर्जे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी सफारती हिमायत जारी रख। वजीर आजम शहबाज शरीफ पैं पैगाम में चाहिए दुश्मन खिलाफ कामयाबी अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतन एहसासन ला सजदो करण जो ठीक है। अज अस उन आजम हिम्मत ए साबित कदमी की याद कर रहा हूं जो पाकिस्तान आजमाय के वक्त में दिखारी या दुश्मन के जबरदस्त शिकस्त डी। भारत खिलाफ भक्ति जंग में कामयाबी के एक साल मुकम्मल थे पीपल्स पार्टी कराची की सीवीओ शानदार तकरीब पर वजीर नवाज अली शाह खिताब कन्द तो पाकिस्तान हक की जंग में दुश्मन के प्रतनाक शिकस्त डी। भारत सदाई पाकिस्तान से कोई इल्जाम लगाई रहा है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है खिते में अमन तोड़े इस्तकाम चाहे तो। सदर आसिफ जरदारी ए शेख बेनज़ीर भुट्टो चीन का मिजाइल टेक्नोलॉजी वरती, पाकिस्तान या मिजाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर कुछ ही कलाकन में भारत के शिकस्त डी। भारत के पैं जहाजन से वो नाज हो, पाकिस्तान वे जहाज किराए तबाह कर छा। अज पाकिस्तान खिते जो अहम मुल्क बणजी चुको है। अमेरिका हक में कामयाबी की खुशी में गवर्नर हाउस में भी शानदार तकरीब, भारत के भरतनाक शिखर और पाक फौज के भेटा पेश।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: छा अहाजो चेहरो बेजान।

0: काई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
1: पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं।
2: भारतीय मीडिया की जानिब से भी अपने तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी गई है।
3: छठा तैयारा MiG-29 है जिसको पाक फजाइया ने अपनी कार्रवाई में तबाह कर दिया है।
4: झपटना पलटना पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना।
5: नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स।
6: इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करें और हम और इनके जहाज गिराएंगे।
4: सांस पता मजबूत कदम समंदर में फैली खामोश ताकत और वो मार्कतुल आरा क़यादत जिसने सर किया मार्काए हक जिसकी गूंज 7 समंदर पार दुश्मन को लरता गई। दूर अंदेश क़यादत और जुगनत बहादुरी का इजहार मादरे वतन से लाजवाल इश्क और शौके शहादत की आला मिसाल। हमारी हर सांस जज्बाए जुनून और जवां, हर परवाज हर उड़ान वतन की हुर्मत के नाम।
7: Even the shooting down of those 6 planes was Pakistan showing restraint. Pakistan had 20 Indian planes locked that night.
4: Markai Haq, ek fatah, ek paigham, ek Pakistan.
8: Pakistan, hamesha zindabad, hamesha zindabad, hamesha zindabad.
9: Subha ki chai, ya traffic ka jam. Har pal fun, GFM, badalti life ki tragedy.
10: Yeah!

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

तो जी सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक सॉन्ग जो नुसरत फतेह अली का आवाज में था, तो जी बहुत अच्छा सॉन्ग था। कौन ज्वाइन करते हैं इसके बाद, तो हमारे पास बहुत सारे सॉन्ग मौजूद हैं सुनने के लिए। तो यहाँ पर एक और हम सॉन्ग लगाने लगे हैं और इस सॉन्ग को हम प्ले करने लगे हैं और प्ले करते हैं, और ये है कि भाई शमन अली मिराली की आवाज में सॉन्ग, जो कि जिसकी भी आवाज जिसकी भी पसंदीदा सॉन्ग चलते जा रहे हैं वो समझते जाएं कि भाई इनके जवाब जो बिल्कुल ठीक हैं, जो जो आपने मुझे जवाब दिए हैं वो उसके आंसर बिल्कुल ठीक हैं, तो उनके ये सॉन्ग प्ले करने लगती हूँ मैं सारे। तो एक और सॉन्ग मैंने कर दिया है प्ले, तो सुनते हैं सॉन्ग को भी।

0: तो यकीनन आप लोग समझ गए होंगे. और मैं फिर भी ब्रेक से वापस आने के बाद अपना राइट आंसर आपको बता दूंगी कि राइट आंसर क्या था जब भी मैंने ये सॉन्ग प्ले किए हैं. तो टाइम होता है यहाँ पर हमारे पास ब्रेक की तरफ जाने का, चलें चलते हैं ब्रेक की तरफ और वापस आएंगे. तो वापस आके मैं बताऊंगी. और जाते जाते मैं एक और देख लेते हैं कि हमारे साथ अभी कौन से लिसनर मौजूद हैं जो न्यू न्यू हमें ज्वाइन किया, जिसने देख लेते हैं फिर उसके बाद जाएंगे यार हम ब्रेक पर. अच्छा हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप कुमार, कहते हैं गोट बाबू वेरो थरपारकर से दिलीप कुमार मेघवार नोल रॉय और दानिश कुमार और सूरज गुल शंकर लाल और शो लाजवाब है. थैंक यू सो मच दिलीप कुमार, आपने मुझे ज्वाइन किया. ऐसे ही हर संडे आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है और जैसा कि आपका और मेरा साथ हमेशा रहता है संडे संडे ओनली सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक, तो ऐसे ही आपने आज भी मेरे साथ रहना है पूरे पूरे 1 बजे तक. तो अभी यहाँ पर टाइम हो गया बस छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जाने का, वापस आएंगे वापस आके करेंगे बाकी की बातें. तो रहिएगा मेरे साथ.
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
3: This program is brought to you by
4: Bankal Habib, rishta bharose ka.
5: Ab aapki khoobsurti ka fan, White Age Beauty Cream.

0: दिल ही तो है। देखिए 8 अक्टूबर से रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

जी सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक और फरमाइशी सॉन्ग, क्योंकि जिसने जवाब राइट दिया था तो उसका ये सॉन्ग भी प्ले करना जरूरी था, तो सुन चुके हैं हम लोग ये सॉन्ग। और उसके बाद एक और सॉन्ग हमारे पास है वो जो मैं लास्ट में प्ले करती जाऊंगी आप सबके लिए। तो देख लेते हैं एक नजर फेसबुक पर भी कि फेसबुक पर हमारे साथ कौन मौजूद हैं।

0: हमारे साथ रमेश कुमार कोहली मौजूद हैं, गॉट जगी जो धड़कान, रमेश कुमार और केवल कुमार और हरेश कुमार, मुकेश कुमार। ओके जी, ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सारे मेरे साथ मौजूद होते हैं और आपकी फैमिली वाले भी, और आप जो नाम बता रहे होते हैं हमें ज्वाइन कर चुके होते हैं या वो भी मुझे सुन रहे होते हैं, तो ऐसे ही अच्छा लग रहा होता है। तो ऐसे आपने हमेशा संडे संडे मेरे साथ रहना है, आओ बात करेंगे, बात करनी है, जमा कर लेनी है पूरे हफ्ते की बातें और मेरे साथ करनी है। जब मैं आपके साथ आती हूँ सुबह 11 से तो फिर 1 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ। और मुझे ज्वाइन करने के लिए 888-1 पे इसके लिए आप मुझे SMS कर सकते हैं, और लाइव फेसबुक पे कमेंट करने के लिए आप फेसबुक ऑन करके GFM88 का पेज आपने ओपन कर लेना, मेरे नाम का फ्लैट आपको दिख जाता है। आओ बात करें विद आरजे सना के साथ, दिल की बात, खुशी की बात, हर बात यहाँ होती है। तो आपने करनी होती है मुझसे बहुत सारी बातें, लेकिन आप लोग तो नींद से ही इतनी देर से उठ रहे होते हैं जिसकी वजह से आप लोग मुझसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं। अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक का मैसेज अभी रिसीव होता, कहते हैं फर्जिया सुन रखी है, सॉन्ग सुना दें अच्छा सा, लेकिन अभी तो बहुत टाइम कम हो गया है, अगर आप मुझे पहले ही मेरे सवाल के जवाब के साथ आप मुझे सॉन्ग का नाम मैसेज कर दिया करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाता है। तो आपने ऐसे ही करना रेस्टोरेंट से। अच्छा जी, मसरूर अहमद ने एक पोएट्री भेजी है और वो पोएट्री बहुत अच्छी है, जो मुझे लग रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको रीड आउट करूं। तो जी कर लेते हैं रीड आउट, और कहते हैं कि जो बदल जाए वो यार कैसा, जो छोड़ जाए कहते हैं तुझे फिर से प्यार हो जाए, लेकिन जो फिर से हो जाए वो प्यार कैसा। बिल्कुल ऐसा ही है ना, दोबारा से वो प्यार कैसे हो सकता है जो एक दफा हो जाए। बहुत अच्छी मसरूर अहमद आपने पोएट्री भेजी यार, लेकिन अभी जो मेरा सवाल था, मेरा सवाल ये था कि आप लोग मुझे बताएं कि मेरा दिल बहुत उदास है और बहुत ज्यादा ना आज बहुत ज्यादा उदास हो रहा है मेरा दिल, फिर भी मैं आप लोगों को देखें हंसा रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ और आप लोग मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे, ना मुझे कुछ बता रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ अभी, मुझे बस दुख हो रहा है बहुत कि आप लोग तो मुझसे किसी से बात भी नहीं कर रहे होते और मेरा दिल बहुत ज्यादा, इसके लिए क्या हाल है, मैं क्या करूँ, मुझे आप लोग जरा मैसेज करके ये तो बताएं कि मैं आज क्या करूँ ऐसा कि जो है मुझे मतलब फीलिंग कुछ तो बेहतर होना, तो अभी तो मजा ही नहीं आ रहा बिल्कुल। और अभी देख लेते हैं SMS में कौन ज्वाइन करता है, हमें SMS ज्वाइन करते हैं कि सकर से बाजी, ओ बाजी हमारी फैमिली आपके लिए खुदा से सेहत की दुआ मांग रहे हैं, सदाकत हुसैन मीरानी साहब बजर शाह मियानी सकर, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए दुआ मांग रहे हैं। सदाकत हुसैन बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, रियली दिल से कह रही हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, और इसी दुआ की वजह से शायद कि आज मतलब इतने दुख और दर्द के बाद और इतने दिल उदास के बाद भी मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ, आप लोगों की दुआ की वजह से ही, दुआ इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, तो अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की है। प्लीज
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
2: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन।
3: पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं।
4: भारतीय मीडिया की जानिब से भी अपने तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी गई है।
5: छठा तैयारा MiG-29 है जिसको पाक फजाइया ने अपनी कार्रवाई में तबाह कर दिया है।
6: झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना।
7: नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स।
8: इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करें और हम और इनके जहाज गिराएंगे।
6: 10 मई एक तारीख साज पता, फजाओं में गरजते शाही, जमीन का सीना दहलाते मजबूत कदम, समंदर में फैली खामोश ताकत और वो मार्कतुलारा कयादत जिसने सर किया मार्काए हक, जिसकी गूंज सात समंदर पार दुश्मन को लज्जा गई, दूर अंदेश कयादत और जिद्दत और बहादुरी का इजहार, मादरे वतन से लाजवाल इश्क और शौके शहादत की आला मिसाल, हमारी हर सांस जज्बाए जुनून और जवान, परवाज हर उड़ान वतन की हुर्मत के नाम।
9: Even the shooting down of those 6 planes was Pakistan showing restraint. Pakistan had 20 Indian planes locked that night.

बताया है की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम। यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आपके साथ भेज दें। अगर मैं आपका सॉन्ग प्ले कर देती हूँ, आपका सॉन्ग प्ले हो जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि बिल्कुल जो है ना ये आपका जवाब ठीक है। लेकिन अगर सॉन्ग आपका प्ले नहीं होता तो उसका मतलब कि आपका जवाब गलत है। लेकिन आपने आज मुझे ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम बहुत ही कम है और यहाँ सॉन्ग हमारा प्ले लग चुका है जो कि लास्ट में एक लिसनर का सॉन्ग है। और उसके अलावा डेडिकेट तो सबको ही होता है, सबके लिए सुनते हैं ये सॉन्ग। डेडिकेट मैं सबको करने से लास्ट में प्ले कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगा क्या मेरा सेगमेंट भी, बहुत सारे लोगों ने विन भी किया है, जीते भी हैं मजे मजे का सॉन्ग। और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अभी जरूरी से खालिक लशारी, सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं चम्मच। अच्छा जी जी, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, सवाल का जवाब ही चम्मच है, लेकिन आपने सॉन्ग नहीं बताया और लेट हो गए हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन नेक्स्ट संडे आपने जलोड़ी से खालिक लशारी आपने मुझे टाइमली ज्वाइन करना है, जैसे आप हमेशा करते हैं ऐसे ही नेक्स्ट संडे भी आपने मुझे टाइमली ज्वाइन करना है। और उसके अलावा जो जो लेट हो जाता है, जो जो लेट आता है मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए, सॉन्ग निकल जाते हैं, मजे मजे की बातें रह जाती है, तो टाइमली आपने मुझे ज्वाइन कर लेना है और जल्दी उठने की आदत डाल लेनी है। तो जी, जब तक यहाँ पर एक और हम लोग सॉन्ग सुनेंगे लास्ट में, जो प्ले करते जाऊंगी मैं आप सबके लिए।

0: दीवानगी।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जिए
3: अभी बुधोपिया, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
5: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
6: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
7: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN News।
8: मुबारक आ रही जंगी जुनून और महदूद जहिलियत के गुमराह उन सब के जरिए पाकिस्तान पर नाजायज जंग मुसलसल करने और ताकत के जोर में तंग नजर और अलीली मुद्दती सियासी वाली मुकासे हासिल करने की नाकाम कोशिश करता रहा है। मौत हक महल है दो मालिक या वाद के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग न थी बल्कि दर हकीकत ये दोनों नदियात के दरमियान एक कसम मौका था जिसने अल्लाह हजरत से हक फतायाब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की इमा पर फितना अल-ख्वारिज और फितना अल-हिंदुस्तान की पुष्प नहीं बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज और समाजों का मुकम्मल खात्मा करे।
9: हकवारी जंग रुगो बिन मुल्कन जी जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई। फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर जो ऑपरेशन बनार मरसूद की कामयाबी के एक साल पूरे थियण ते जीएचक्यू में कोठायल तकरीब के खिताब। फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर हकवारी जंग 7 मई के विच वाली रात का 10 मई

दुश्मन असांजे क़ौमी बकार खे आज़माइण जी नाकाम कोशिश कई। मई 2025 जंग खां ओचितो ईंदड़ जंग न हुई। माज़ी में बि दुश्मन पाकिस्तान ते बेबुनियाद ऐं हथ ठोकिया इल्ज़ाम लॻाइण जी कोशिश कई, पर हक़ जी जंग में भारतीय डायरेक्ट जो मुंहुं तोड़ जवाब ॾिनो वियो। पाकिस्तान जे दुश्मन खे हर भेरे शिकस्त जो मुंहुं ॾिसणो पियो। ऑपरेशन बनारन मरसूस खे 1 साल मुकमल थियण ते GHQ में मुनक़द ख़ासि तकरीब खे ख़िताब कंदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो, दुश्मन ॼाणे वठे त पाकिस्तान ख़िलाफ़ अॻिते अगराई जा असर इंताई ख़तरनाक ऐं तकलीफ़ ॾींदड़ हूंदा। भारत जो ख़राब ख़्वाब आहे त पाकिस्तान खे अस्करी जवाहरियत ऐं सफारती अकलाई जो निशानो बणाए खिते में ताक़त जो तवाज़ुन तब्दील करे। इहो ख़्वाब हुन जो कद ऐं सलाहियत खां घणो वधीक आहे, जो पाकिस्तान कॾहिं बि कामयाब थियण न ॾींदो। फतह मिज़ाइलनि ऐं पाक फिज़ाए जे शाइननि दुश्मन जे 26 खां वधीक फ़ौजी हदफ़नि खे कामयाबीअ सां निशानो बणायो। आवाम ऐं क़ौमी क़यादत जो पैगाम आहे त मुल्की ख़ुदमुख्तियारी, सरहदी सलामती ऐं क़ौमी वक़ार ते को बि ठाह क़बूल नाहे। भारत जंग जे नतीजे में थियल जानी ऐं माली नुक़सान जी क़ीमत ईंदड़ वक़्तनि ताईं अदा कंदो रहंदो।

0: नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं।
2: भारतीय मीडिया की जानिब से भी अपने तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी गई है।
3: छठा तैयारा MiG-29 है जिसको पाक फजाइया ने अपनी कार्रवाई में तबाह कर दिया है।
4: झपटना पलटना पटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना।
5: नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स।
6: इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे।
4: 10 मई एक तारीख साज पता, फजाओं में गरजते शाहीन, जमीन का सीना दहलाते मजबूत कदम, समंदर में फैली खामोश ताकत, और वो मार्कतुल आरा कयादत जिसने सर किया मार्काए हक, जिसकी गूंज 7 समंदर पार दुश्मन को लरता गई। देश कयादत और जिगरत और बहादुरी का इजहार, मादरे वतन से लाजवाल इश्क और शौक शहादत की आला मिसाल, हमारी हर सांस जुनून और जवां, हर परवाज हर उड़ान वतन की हुर्मत के नाम।
7: Even the shooting down of those 6 planes was Pakistan showing restraint. Pakistan had 20 Indian planes locked that night.
4: Markai Haq, ek fatah, ek paigham, ek Pakistan.
8: Pakistan, hamesha zindabad, hamesha zindabad, hamesha zindabad.
9: Subah ki chai, ya traffic ka jam. Har pal fun, GFM, badalti life ki tragedy.
10: Yeah!

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: It's 1:15 PM.
4: This time check is brought to you by
5: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर

0: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram, ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खत
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं।
3: भारतीय मीडिया की जानिब से

0: तारीख साल फतह, फजाओं में गरजते शाही, जमीन कसीना दहलाते मजबूत कदम, समंदर में फैली खामोश ताकत और वो मार्कतुल आरा कयादत जिसने सर किया हक, जिसकी गूंज सात समंदर पार दुश्मन को लरजा गई, दूर अंदेश कयादत और जिद्दत और बहादुरी का हर सांस जज्बाए जुनून और
1: The shooting down of this, those six planes was Pakistan restrained. Indian planes locked that night.
0: मार्काए हक, एक फतह, एक पैगाम, एक पाकिस्तान.
2: पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद.
3: नहीं बुधो प्यार, जीए हैदराबाद मटियारी, FM 91.6. सिंध जो आवाज
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं।
3: भारतीय मीडिया की जानिब से भी अपने तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी गई है।
4: छठा तैयारा MiG-29 है जिसको पाक फजाइया ने अपनी कार्रवाई में तबाह कर दिया है।
5: झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना।
6: नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स।
7: इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराए।
5: गरजते शाही जमीन का सीना दहलाते मजबूत कदम, समंदर में फैली खामोश ताकत, और वो मार्कतुल आरा कयादत जिसने सर किया मार्काए हक, जिसकी गूंज 7 समंदर पार दुश्मन को लरता गई। दूर अंदेश कयादत और जिद्दत और बहादुरी का इजहार, मादरे वतन से लाजवाल इश्क और शौक शहादत की आला मिसाल। हमारी हर सांस जज्बाए जुनून और जवां, हर परवाज हर उड़ान वतन की हुर्मत के नाम।
8: इवन द शूटिंग डाउन ऑफ दिस दोज 6 प्लेन्स वाज पाकिस्तान शोइंग रिस्ट्रेंट। पाकिस्तान हैड 20 इंडियन प्लेन्स लॉक्ड दैट नाइट।
5: मार्काए हक, एक फतह, एक पैगाम, एक पाकिस्तान।
9: पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद।
10: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: जल्दी से पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन करते जाइए, और उसके साथ साथ शेयरिंग जो है ना वो बढ़ाते जाइए। ओके जी, यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं उनको जरा शामिल प्रोग्राम रख दूँ, फिर तसल्ली से आप लोगों को जो है ना व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर अनवर भाई हमारे साथ मौजूद है। अनवर भाई, आपको वेलकम करते हैं। लेकिन जिंदगी ने एक दिन मौत से पूछा कि लोग मुझसे मोहब्बत और तुमसे नफरत क्यों करते हैं। मौत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अस्सलाम वालेकुम, तो मैं खूबसूरत झूठ हो और मैं एक कड़वा सच हूँ। अच्छा, क्या बात है। और अनवर भाई, मुझे नहीं मिली जी, और आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, क्या बात है जी। हिदायतुल अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, वेलकम। सनाउल बरोई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। जाहिद अली बुर्दी हमें सुन रहे हैं, वेलकम जी। मोहम्मद जमान, हेलो। सिराज अहमद हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मिरपुर खास खां वठी आयो आहियां। क्रीम जी छा ॻाल्हि कजे, रमज़ान कुंभर घर में इस्तेमाल करे पियो। चलें जी, जबरदस्त, अगर आप इस्तेमाल करें तो बिल्कुल ऐसे मुझे बता दिया करे। उसके अलावा तारिक हुसैन लाहौर भाई हमारे साथ मौजूद है, तारिक भाई आपको भी वेलकम, पता नहीं क्या आपने कॉमेंट में लिख दिया है। और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ सिराज, आपने क्या कहा है, बहुत दिनों के बाद आप हमारे शो सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं आपको, बस रोजाना आप हमारे प्रोग्राम में आ जाया करें। आप लोगों को खूबसूरती की बातें बताती हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, तो खूबसूरती की बातें भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल के दौर में देखा जाए तो कौन आप लोगों को इस तरह की बातें बताता होगा जिसमें आप लोगों की खूबसूरती बढ़ेगी और साथ साथ आपकी खूबसूरती जो है ना वो हमेशा प्रोटेक्ट भी रहेगी। और अगर गर्मी के मौसम में जो है ना कई मरतबा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना है और कौन से प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों का सीजन में खास करके, तो गर्मियों का सीजन जब भी आए तो आप लोगों के जहनों में ये बात आए कि व्हाइट एज वालों की लवली क्रीम मौजूद है मार्केट में। और व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताते चलूं कि ये व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ये सिर्फ एक लवली क्रीम नहीं है, बल्कि इसके अंदर आप लोगों को सनस्क्रीन भी मिल रही है जो कि आप लोगों को खूबसूरती के साथ साथ आप लोगों को जो है ना वो प्रोटेक्ट भी करने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप धूप में काम करते हैं या फिर आपका कोई इस तरह का काम है जो कि आपको बाहर धूप में जाना पड़ता है, या फिर लड़कियां हैं, लड़के हैं जो कि कॉलेज

जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, इस तरह की अगर सिचुएशन आपकी जिंदगी में भी चल रही है तो आपने YTH की लवली क्रीम का इंतखाब जरूर करना है अपनी जिंदगी के अंदर। रोजाना सुबह और रात अगर आप मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करेंगे, अगर आप चेहरे पर लगाते हैं, गर्दन पर लगाते हैं, हाथों पैरों पर लगाते हैं, तो आप लोगों को जो है ना बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। रेडियंट जनाब अल्ट्रा वाइटामिन के साथ तैयार शुदा है, जिसके अंदर आपको वाइटामिन बी मिलता है, वाइटामिन 3 मिलता है, वाइटामिन सी मिलता है और वाइटामिन ई की ताकत के साथ साथ बहुत सारे ऐसे वाइटामिन जो कि आप लोगों के चेहरे को निखारेंगे और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देंगे। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, हर किसी के लिए है, इसे हर एज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई एज लिमिट से इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो आप हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे भी लगा सकते हैं, आप टीनेजर्स भी लगा सकते हैं, बूढ़े भी लगा सकते हैं, जवान भी लगा सकते हैं। बिल्कुल से ये कमाल है व्हाइट एज लवली क्रीम का। इसके साथ साथ अगर बात की जाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की, तो बिल्कुल जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है तो ये जनाब बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है एवोकाडो और एलोवेरा से तैयार शुदा है। ये दोनों चीजें आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपके जल्द को आपके चेहरे पर झुरियां हो, आपके चेहरे पर निखार लाने के साथ साथ आपके चेहरे की हिफाजत भी करती है। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम अगर आप नाइट क्रीम अच्छी वाली लेना चाहते हैं, अच्छी वाली नाइट क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल करें। वो ब्यूटी सोप भी मिल रहा है और व्हाइट एज का ब्यूटी सोप आप इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ जो लोग अगर सोप नहीं लगाते, फेस वॉश लगाते हैं, तो वो व्हाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश लगा सकते हैं। बिल्कुल जी, फेस वॉश भी है और सोप भी है, बस पसंद आप लोगों की होगी कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ साथ व्हाइट एज में और भी मजीद बहुत से प्रोडक्ट है, जैसे कि आप लोगों को डॉक्टर पिंपल का ट्यूब मिल रहा है। और डॉक्टर पिंपल का जो ट्यूब है ना, इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात ये है कि इसे वो लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके चेहरे पर एक नीज आ चुके हैं, एक नीज को खत्म करना चाहते हैं, तो डॉक्टर पिंपल का ट्यूब लगाएंगे जो कि व्हाइट एज कंपनी का है। इसी के साथ साथ ये फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है, और यानी कि इसके अंदर सारी इस तरह की चीजें ऐड की गई है जो कि आप लोगों की स्किन पर जो ऑयल काफी ज्यादा जमा हो जाता है, या फिर आपके चेहरे पर जो है ना वो एक्नी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक्नी भाई हर तरह के एक्नी अगर आपके चेहरे पर, यानी कि छोटे वाले एक्नी हैं, मोटे वाले हैं, या फिर वो हर तरह के एक्नी का खात्मा पर जितने भी एक्नी है, जितने भी पिंपल्स हैं, ये सारे खत्म कर देगा। तो आयुर्वेदिक फार्मूला है, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। उसके अलावा हाँ जी, तो व्हाइट एज का जो है ना वो लोशन भी मौजूद है, और व्हाइट एज का जो है ना हेयर रिमूवल लोशन भी मौजूद है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप आसानी कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। और उसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास नंबर है जो है 03-15-799-0595। ओके जी, नंबर डाल कीजिए 03-15-799-0595। ये नंबर आप डायल करेंगे, इस नंबर के ऊपर रابطہ करेंगे और इन्हें बताएंगे कि भाई जान आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहते हैं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स, और जो भी प्रोडक्ट्स आप अवेलेबल कराना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो आप अवेलेबल इजीली करा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप अवेलेबल कराते जाइए और मुझे बताइए कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट अभी तक नहीं मिल रहे। तो जल्दी जल्दी से आप इन नंबर्स के ऊपर रابطہ कीजिए और अपने एरिया में अवेलेबल कराइए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं कि स्किन केयर जब आप करने लगते हैं तो कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, और वो कौन सा स्टेप है आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं जी, नूरिस नितिनियो भाई हमारे साथ ही लाड़काना से कहते अधिक गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, बहुत शुक्रिया भाई आपको वेलकम करते हैं। और कहते अधिक सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, बिल्कुल जी कोशिश करेंगे, लगाएंगे आपका गाना। दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, हेलो वालेकुम अस्सलाम प्यारी जान। और इसके अलावा हैं जी अच्छा अली अकबर ब्रोही भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सकरन से आप हमारे शो सुन रहे हैं, वेलकम जी। और हैं जी शाहनवाज अली खास के लिए वालेकुम अस्सलाम, मरियाम अली जतोई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अदनान नूर हमारे साथ मौजूद है, अदनान आपको भी वेलकम करते हैं जी। और उसके साथ साथ हमारे साथ है

आगे ऊपर चल गया है ना, ये बस हर टाइम ये चल रहा है. और साथ साथ अदनान कहते आई थिंक हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही था. और स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं हेलो हाय स्मार्ट हाजिर है अपने लबों पर स्माइल आने के लिए, अपने लबों पर चलें ये भी अच्छी बात है. और मोहम्मद समान कहते हैं कि इहा क्रीम डे नाइट लगाए सकजे थी, इहा केड़ी वाजे त कयो, इन में तो इलाही सारा प्रोडक्ट आयन मु समझो कोन तमा केड़ी क्रीम जी बारे में पूछो पया. हिदायतुल्लाह कहते हैं बिल्कुल जी गाने एंजॉय कीजिए. हजार खान जदोई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम हजार भाई. अदनान कहते ओए होए आज इतने अरसे बाद, बस कोशिश यही होती है कि हम जब भी आपको मिलें कि तो पुराने अंदाज में मिलें. और किशोर भाई कहते हैं आज भी मैं टॉपिक पर बात नहीं कर सकता, क्यों नहीं करते बात आप टॉपिक के ऊपर, क्या करें भाई सवाब मिलता है. और उसके साथ साथ जो है ना पैनल की जाने बातें, तो बहुत से मैसेजेस हैं पैनल की जाने भी पड़ेंगे और आपके मैसेजेस, लेकिन यहाँ पर गाना है तो मैं सोच रही थी कि जरा हम ये वाला गाना सुन लेते हैं. और गाना बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाला है. और साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस में जल्दी से इसलिए रीड करती जा रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि हम 2 बजे के बाद कॉल्स की जाने वाले हैं. कॉलर्स जो हैं वो जरा रेडी हो जाएं, 2 बजे के बाद आप लोगों की कॉल्स होंगी, आप लोगों के साथ बातें करेंगे और आप लोगों से पूछेंगे बताइए जरा अगर आप स्किन केयर करने लगते हैं तो कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि आप लोगों का आपको लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किन केयर में जो है ना ये स्टेप है. तो आप जल्दी से जरा इस चीज को समझ लीजिए और कॉल पर आएंगे तो टॉपिक को लास्ट में फॉलो कीजिएगा.

अच्छा हिदायतुल्लाह क्या कह रहे हैं, वैसे तुम इतना क्रीम के बारे में बताती हो कि बंदा बोलता है बस अभी जाएं और व्हाइट एज का। अच्छा व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स लेकर आए। अच्छा इतना पावर है मेरी बातों में, सच बताए। ओके जी, अरीबा हमें सुन रही हैं। अरीबा हेलो, वेलकम करते हैं आपको। इरम हमारे साथ मौजूद है, इरम आपको वेलकम हो गया। मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर, आपका शो वेरी नाइस है। और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आज खरीद करूंगा। ओके बाजी, बिल्कुल जी खरीद कीजिएगा, हमें बताइएगा आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं। और गोच मोहम्मद तैयब थेबू, हाँ हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ है, तुम्हारा जो शो वेरी नाइस आए, सलाम तमाम के, वालेकुम अस्सलाम। और ये कशफ कहती है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी है। और कहती है आप ही, मैं भी व्हाइट एज क्रीम एंड फेस वॉश एंड लवली क्रीम लेकर आई हूँ कल मार्केट से, और लगी बहुत मजे की है। और मैं डॉक्टर पिंपल्स वाला ट्यूब भी साथ में लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है। आप ही अच्छा किया ना मैंने, भी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया आपने।

जी, जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइएगा, ठीक है ना। और चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे बेटा से जो कैसी हैं आप, शो इज गोइंग ओके, शो तो अच्छा जा रहा है, बाकी सुनने वाले ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। और कहते हैं कि बिल्कुल जी, आप कोशिश कीजिएगा कि आप वाइटिश के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो परचेज करें और फिर इस्तेमाल करें और फिर हमें बताएं कि आपको रिजल्ट्स क्या और कैसे मिल रहे हैं। और उसके अलावा जो आपने गाने की फरमाइश कर दी है, ओके जी। और ये है प्रिंस अहमद अली रिंद फ्राम अहमद आबाज, वालेकुम असलाम, पाकिस्तान पाक आर्मी, स्वीट शो प्लीज रहमान मुगल का कोई भी गाना प्ले कीजिएगा, आई ट्राई। अच्छा ये कहते हैं, सलाम सिदरा मुस्कान, केड़ा हाल आहन खुशायो, अदीमा अवां जो प्रोग्राम वडी शौक सा बुधा पयो, बुधा पई, अच्छा सॉन्ग जरूर प्ले कजो, मां अवां जी दोस्त आहां, अवां जी भेण सुगरा जमाली, नंडो अली हसन जमाली, आहे विलेज रईस मोहम्मद हसन जमाली, आशफी।

इलाहाबाद नवाब शाह, प्लीज पिले अमीरा बेगम मेकू। अच्छा चले, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। हमारी प्यारी दोस्त सुग्रा जमाली आपके लिए गाना लगाया गया, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगी, कब करेंगी और कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगी, कौन सा यानी कि प्रोडक्ट लगाने वाली है। अच्छा बाबू अदील अबड़ू हमारे साथ मौजूद है। ओके।

भी बहुत ही प्यारा सा गाना आप इंजॉय करें और साथ साथ प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे पूरी पूरी तीन बजे तक। प्रोग्राम है व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। ले रही आप न्यूज ब्रेक, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते। ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88.8 पर, सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: It's 2 PM. This time check is brought to you by.
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: पाकिस्तान खिलाफ़ अॻिते अगराई जा असर इंतिही ख़तरनाक ऐं तकलीफ़ ॾींदड़ हूंदा। भारत जो ख़्वाबु आहे त पाकिस्तान खे अस्करी जारियत ऐं सफ़ारती खिलाई जो निशानो बणाए खिते में ताक़त जो तवाज़ुन तब्दील करे। इहो ख़्वाबु हुन जे कद ऐं सलाहियत खां घणो वधीक आहे, जेको पाकिस्तान कॾहिं बि कामयाब थियण न ॾींदो। फतह मिज़ाइलनि ऐं पाक मिज़ाइल जे शाहिनि दुश्मन जे 26 खां वधीक फ़ौजी हथकनि खे कामयाबीअ सां निशानो पढ़ायो। आवाम ऐं क़ौमी क़यादत जो पैगाम आहे त मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी, सरहदी सलामती ऐं क़ौमी वक़ार ते को बि ठाह क़ाबिले क़बूल नाहे। भारत जंग नतीजे में थियल जानी ऐं माली नुक़सान जी क़ीमत ईंदड़ वक़्तनि ताईं अदा कंदो रहंदो।

आखिरी जंग में भारत जी अमृतनाक शिकस्त के एक साल मुकम्मल। आज समूरे मुल्क में फतेह जश्न मल्हाए पे वे। जीएचक्यू रावलपिंडी में शानदार तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीब में मेहमान खास तौर शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु ए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के शहीदन की यादगार से हाजिरी। गुलदस्तो रखियो ए फातह खुआनी कई। आईएसपीआर पारा जारी कल बयान में कौम की हिमायत से हथियारबंद फौज सभी अंदरूनी ए बाहर चैलेंजन के मुंह डेण लाय मुकम्मल तौर से तैयार है। जंग में फतह हथियारबंद फौज की तैयारी चाह ए पेशावरानी सलाह जो सबूत है। अगली जंग में कामयाबी अवाम जो हथियारबंद फौज के एतमाद के मजबूत किया है।

0: भारत खिलाफ ऑपरेशन मरकयाक की कामयाबी के एक साल मुकम्मल थे सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कौम ए पाक फौज के वाधायू डी पन सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान अमन पसंद रियासत है पर हर जारियत जो भरपूर जवाब दियण बजाणो था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क्यादत में पाक फौज दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब दिनो भारत के गैर कानूनी कब्जे हेठ वाल कश्मीर जो मसलो ठहराने मुताबिक हल थन घुर्जे पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी ए सफारती हिमायत जारी रखो वजीर आजम शहबाज शरीफ पैं पैगाम में चया दुश्मन खिलाफ कामयाबी अल्लाह तला की बेशुमार नेमतन एहसासन सजदो कर ढी है अज अस उन आजम हिम्मत ए साबित कदमी की याद कर रहा हूं जहां पाकिस्तान आजमाय के वक्त में दिखारी ए दुश्मन के जबरदस्त शिकस्त दिनी भारत खिलाफ हक की जंग में कामयाबी के एक साल मुकम्मल थे पीपल्स पार्टी की कराची की सीव्यू शानदार तकरीब पर वजीर मुराद अली शाह खिताब कन्दे तो पाकिस्तान हक की जंग में दुश्मन के प्रतनाक शिकस्त दिनी भारत सदाई पाकिस्तान से कूड़ा इल्जाम लगाई रो है पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है खिते में अमन तोड़े इस्तकाम चाहे तो सदर आसिफ जरदारी शेख बेनज़ीर भुट्टो चीन का मिजाइल टेक्नोलॉजी वरती पाकिस्तान या मिजाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर कुछ ही कलाकन में भारत के शिकस्त दिनी भारत के पैन जहाजन से बड़ो नाज हो पाकिस्तान वे जहाज किराए तबाह कर छाया अज पाकिस्तान खिते जो अहम मुल्क बणजी चुको है अमेरिका हक में कामयाबी की खुशी में गवर्नर हाउस में भी शानदार तकरीब भारत के भरतनाक शिखर दिनर पाक फौज के भेटा पेश
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
6: भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं
7: भारतीय मीडिया की जानिब से भी अपने तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी गई है
8: छठा तैयारा MiG-29 है जिसको पाक फजाइया ने अपनी कार्रवाई में तबाह कर दिया है
9: झपटना पलटना पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना
10: नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स
11: इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर और ये और हमला करें और हम और इनके जहाज गिराएंगे
9: 10 मई 41 साज पता फजाओं में गरजते शाही जमीन का सीना दहलाते मजबूत कदम समंदर में फैली खामोश ताकत और वो मार्कतुलारा क़यादत जिसने सर किया मार्काए हक जिसकी गूंज 7 समंदर पार दुश्मन को लरता गई दूर अंदेश क़यादत और जिद्दत और बहादुरी का इजहार मादरे वतन से लाजवाल इश्क और शौके शहादत की आला मिसाल हमारी हर सांस जज्बाए जुनून और जवां हर परवाज हर उड़ान वतन की हुर्मत के नाम
12: इवन द शूटिंग डाउन ऑफ दिस दोस 6 प्लेन्स वाज पाकिस्तान शोइंग रिस्ट्रेंट पाकिस्तान हैड 20 इंडियन प्लेन्स लॉक्ड दैट नाइट
9: मार्काए हक एक फतह एक पैगाम एक पाकिस्तान
13: पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद हमेशा जिंदाबाद हमेशा जिंदाबाद

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: के प्रेसिडेंट बोली है
1: असांजा दोस्तन दिलीप कुमार मेंगवाल कुर्बान अली खास केली आई की सगे असांगे जे फौजिया सुमरे जे आवाज में नगमो बुदायो
0: चलो ठीक है फौजिया सुमरो अगर टाइम बचियो तो तमा जला हलाइंदासी ओके जी जी कॉलू वी तुम जरा सोना सोना भाई कॉल करना था लास्ट भी वी ही वाली कॉल वेठू था तो केर कॉलर असर मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: केर असर मौजूद है
2: गुरालम खान जरा का ममदरी गरार बुलाया
0: ओके अदा संजे प्रोग्राम बुधन आयो
2: जी जा
0: अच्छा मुखे बुधा ता के असांजे प्रोग्राम जो नालो अचे तो
2: ने नालो कोन दो अचे
0: अच्छा नालो न तो अचे ता तवा क्रीम किया वठण वेंदा
2: हेलो हां याद करू मैं
0: जी बिल्कुल नालो याद कजो मुखे बुधा केन दोस्तन के याद कंदा
2: जस्टन जदी याद कने असें सोजा समरो
0: जी जी
2: गानो असें बुधराइयो
0: जी जी पोजिया समरो फौजिया सुमरो बिल्कुल हलाइंदासीं दोस्तनि खे यादि

करीबी जनरल स्टोर था वनी मिलन था या नथा मिलन अब त वनी वठी आया आयो ही ही प्रोडक्ट वठी आया आयो सो मुखे बुधायो न सगे गो टाइम थियो आ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठू था हां कारी नवन जो बाबा इते बैठा हो जो म ओही वनी ओही मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड की 88 नेटवर्क सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए।

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach.
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं
4: भारतीय मीडिया की जानिब से भी

0: बिरला मंदिर में फैली खूब मार्कर सर किया मार्काए हक, जिसकी दूर अंदेश कयादत और जिद्दत बहादुरी का इजहार, मादरे वतन से लाजवाल इश्क और शौक शहादत की आला मिसाल। हमारी हर सांस जज्बाए जुनून और जवां, हर परवाज हर उड़ान वतन की हुर्मत के नाम।
1: Even the shooting down of those six planes was Pakistan showing restraint. Pakistan had 20 Indian planes locked that night.
0: Markai Haq, ek fatah, ek paigham, ek Pakistan.
2: Pakistan, hamesha zindabad, hamesha zindabad, hamesha zindabad.

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे सुनते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसल ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध ॿुधंदा रहो।

योगी जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम रेडियो नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन बहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो।

ओके जी, सो कहाँ कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं मुझे बताते जाइए, और इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो जनाब अपने होने का एहसास दिला दिया करें। आप हमें मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और कॉल्स भी कर रहे हैं। तो मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछ लिया, सिंपल सा सवाल पूछा जो कि मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ नहीं आया है। मुंहमा का सवाल पुछवाए थे जिन तमाम पानी स्किन की हिफाजत करण चाहिंदा आयो, स्किन जो ख्याल रखण चाहिंदा आयो, तो कड़ा अड़ा जे ना टिप्स हूंदा या कड़ियो अड़ियो चीजू हूं जी तमाम लगे तो ही चीजों अगर असा पांजे स्किन केयर में एड कंदासी तो असाजी स्किन केयर जो है वहां बेहतर थी सके या जो तमाम लगे तो ही चीजों असाजी स्किन केयर के लिए जो सफा इम्पोर्टेंट है। तो उन बारे में तुम मुख्य बुधायो पाया गडो गड तुम मैसेजेस हैं जैसे पढ़ासी कॉल्स भी कुछ तुम पिक कंदी। लुबी असा ज्वाइन कर चुकी है। लुबी कहती है सलाम अलैकुम सिर जाने क्या हाल है, मैं भी आके साथ साथ नाइस शो कोई भी अच्छा सा सिंधी सॉन्ग मेरे नाम कीजिएगा। ओके जी, आज गाने वैसे ही मैंने अच्छे वाले लगाए हैं तो आप बस इंजॉय करते जाइएगा। और उसके साथ साथ पैनल की जाने बातें हैं तो पैनल पर भी काफी मैसेजेस हैं। ओके जी, सो हमारे साथ हैं जी अजादार अहमद फ्रॉम लाड़काना। हाय सिद्रा मुस्कान, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स टू यू अ न्यू शो। सिद्रा उस दिन आपने ठीक से नहीं पढ़ा था मेरा मैसेज। अच्छा चलें ये ठीक है, मैं समझ गई सारी बात। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है, गर्मी आना गर्मी मत चढ़ी वेंदी है समझो था। और उनका अलावा अजादार तमाम चौथा भली करी आया और ये लिखते हैं अर्ज किया है मैं लफ्जों से कैसे बताऊँ की कितनी खास हो तुम, जुदा होकर भी खत्म नहीं होता वो एहसास हो तुम, मेरी हैसियत होती तो तुम्हारी किस्मत संवार देता, एक दिल था जो तुम्हें दे दिया, हजारों भी होते तो तुम पर वार देता। गुलाम शबीर तुनियो हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम कंबर, कहते हैं न्यू शो तो गुड है बहू, सच्ची बताए बहू। वेलकम करते हैं आपका। और मल्हार अली हमारे साथ फ्रॉम कराची, कहते फर्स्ट टाइम शामिल हुआ हूँ आपके शो में, सॉन्ग तो सुनाइएगा। ओके मैं सोच रही थी ये कौन सा गाना है, मैं सर्च करूंगी, मुझे मिल गया तो लगा देंगे, आज नहीं तो कल सही। ठीक है, और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू जी, थैंक यू। और चाचा खालिद को आपने गाना डेडिकेट किया है। और इसके अलावा चाचा खालिद कहते हैं स्किन केयर में फेस वॉश देन लवली क्रीम नाउ बाय डी स्किन क्रीम एंड फेस वॉश टॉपिक आंसर। ओके वेरी नाइस, चाचा को देंगे सारी बातें बताए। ठीक है, आप सीखा करें चाचा से कुछ। अच्छा ये कश्यप कहते हैं सुनो मेरी तो कॉल लगती ही नहीं है, क्यों भला कब से नंबर लगा रही हूँ कॉल लगी नहीं रही है और कब लगेगी बताओ तो, अब ये मुझे पता होता तो अगते न हो जहाँ। और कहते हैं मेरी सिस्टर अलीजा फिजा माविजा एंड अम्मी और भाभी आपका शो सुन रही हैं और आपको सलाम दे रही हैं बहुत सारे, अब दुआ करो हमारी कॉल लग जाए, कल भी नहीं लगी थी आज भी नहीं लग रही और मुझे बहुत दुख हो रहा है, अब आप ही मेरी दोस्त हैं और सिस्टर बन के रहना। ओके जी, ओके तमाम जो हुकुम अखिन थे आई वी गाल तमाम जी कॉल लगी हुई थी अगर तमाम ट्राई करना। चाचा खालिद कहते हैं मेरी कॉल काश लग जाए नहीं लगती, हाँ ये वाकई है चाचा खालिद की भी कॉल कभी नहीं लगी है, वैसे मैं चाहूंगी कि आप लोगों की कॉल लग जाए मजा आएगा। कश्यप से बात करेंगे और उन लोगों से जिनकी कॉल कभी भी नहीं लगी है, तो आप कोशिश करें कभी ना कभी आपकी कॉल लग जाएगी। और ये मैंने अमीरा बेगम की आवाज में गाना लगाया है, ये जो एक हमारी प्यारी लड़की थी ना क्या नाम था उसका,

दोस्तों तव्हां जेको आहे न इस्तेमालु कयो पिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे एरिया में नथी मिले, तव्हांजे सिटी में नथी मिले, तव्हांजे ॻोठ में नथी मिले, तव्हांजे शहर में नथी मिले, तव्हांजे पाड़े में नथी मिले, त तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595 हिन नंबर ते तव्हां कॉन्टेक्ट कयो, इन्हनि खे चओ त तव्हांजे एरिया में अवेलेबल कराइन डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जीअं तव्हां इस्तेमालु कयो ऐं सुहिणा थी वञो। छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे इहा वाइटमिन ई बीट सां तयारु थियल आहे ऐं माइक्रो बीट्स भी हिन में मौजूद आहिनि, जेका सिर्फ़ ॿ ॾींहं इस्तेमालु कंदा तव्हां, यानी कि ॿ रातूं अगरि तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे सफ़ा हीअं असली वी आई पी रिज़ल्ट ॾींदी। सो तव्हां बि ज़रूरु इस्तेमालु करे ॾिसजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे, जेका बिल्कुलु तव्हांजी स्किन खे गोरो जटो बणाए छॾींदी, तव्हांजी स्किन खे सोणो बणाईंदी, तव्हांजी स्किन खे ग्लोइंग बणाईंदी ऐं तव्हां थी वेंदा सफ़ा असली पप्पू। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश भी मिली रहियो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां अगरि परचेज कयो था त हुन सां गॾु तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश लाज़मी वठिजो, ठीकु आहे। ओके जी, फेस वॉश भी जेको आहे न उहो बि ज़रूरी हूंदो आहे तव्हांजी स्किन जे लाइ, तव्हांजी स्किन केयर जे लाइ, समझो था।

ओके दोदा अली हमें सुन रहे हैं, दोदा भाई आपको बहुत शुक्रिया, अदनान नूर हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू, नूर सिंतुनियो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। कहते हैं टॉपिक रात को क्रीम लगाना ये स्टेप जो है ना बड़ा अच्छा है, ये अच्छा तो आपको लगता है लेकिन इम्पोर्टेंट है या नहीं ये भी आप मुझे जरा बताइए। और उसके साथ साथ हैं जी अच्छा फिरोज अली ब्रोई भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। वीरू मल मेंगवार हमारे शो सुन रहे हैं।

फेसबुक वाले लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं वो पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए। इसे ये जो हमारा मैसेज है ना जो हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे या फिर डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत से लोगों तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए जो बात जरूरी है वो ये कि आपने बस इतना काम करना होता है कि आप हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है। इससे ये आसानी हो जाती है कि हमारी ये जो पोस्ट है बहुत से लोगों तक पहुंचती है और बहुत से लोग ये चीज जानते हैं और ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है।

स्किन जो है ना वो ग्लोइंग हो जाती है। और अगर आप इस्तेमाल करना चाहें डी स्किन का फेस वॉश, उसे इस्तेमाल करें और रात के टाइम लगाएं अपना फेस वॉश जो है ना डी स्किन फेस वॉश से करेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि भाई आपकी स्किन जो है ना वो और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है, और ज्यादा ग्लोइंग होती जा रही है, और ज्यादा हसीन होती जा रही है। तो जरूर आप ट्राई करके देखिएगा ताकि आप लोगों की खूबसूरती भी बढ़ती रहे और आप लोगों को भी अच्छा वाला निखार मिले। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, देन आपने डायल करना है 03-15-799-0595। ठीक है।

ओके जी, किशोर भाई लिखते हैं कि जिंदगी में मैंने बहुत गलतियां की लेकिन सजा वहां मिली जहां मैं वफादार था। ये थी दुआ, तुम अकेला न हो। अच्छा मोहम्मद जमान कहते हैं मुंह चयो ना कोई भी टॉपिक के फॉलो न करे सकंदो। छो भला टॉपिक मुंह जो दुखियो पुछो छा भला, टॉपिक तो इजी हुयो बस गाल या तो तमाके समझ में जगह गाल है ना थोड़ी देर ही दिया है। चलिए कोई बात नहीं, सना वाला बिरोही हमारे साथ मौजूद है। हेलो हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं वैसे आज? ये भी वैसे बात है, पता नहीं क्यों नहीं किया। इकबाल लाशारी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा पोस्ट को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। और साथ साथ जो है ना यहाँ पर हम ये वाला प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक लगाएंगे। अच्छा मेरे प्रोग्राम में बहुत से लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो बोलते हैं जो है ना वो फौजिया सुमरो का गाना सुनाए हमें। तो फौजिया सुमरो का जो गाना है ना वो मैंने लिस्ट में लगा लिया है। ये गाना हम आप लोगों के साथ साथ सुनेंगे और उन तमाम लोगों को डेडिकेट करेंगे जो फौजिया सुमरो का गाना सुनना चाहते हैं।

ओके, टाइम इतना तेजी से गुजरता जाता है ना, पता ही नहीं लगता। यहाँ पर महर इरफान सियाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं। देर आए दरअसल आए जी, मैं सोच रही थी आज आप कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, देखिए आपका कमेंट आ गया। और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। हजार खान चतुरी कहते अदी सिद्रा सुना है व्हाइट एज की लवली क्रीम लाजवाब है, सच्ची। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है, कसमें आप जब इस्तेमाल करेंगे ना आपको पता चलेगा कि वाकई भाई आपने जो सुना है वो बहुत अच्छा सुना है। तो जरूर आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट जो है ना वो मिल जाएंगे। अच्छा कुछ बातें वाकई बताई नहीं जाती, बंदा नजरों में आ जाता है।

अच्छा किशोर भाई, आप चाहते अलग हो लेकिन वो चाहते अलग ना हो, तो अब मैं तो बीच वाला इंसान हूँ ना, तो मैं क्या करूँ। तो फिर हमें बात माननी पड़ जाती है। बाकी आप जरूर ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और साथ में आप फेस वॉश ट्राई जरूर कीजिएगा डी स्किन वालों का, ठीक है। डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है, तो इसको आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये ऑल स्किन टाइप के लिए। और मजे की बात ये है कि इसके अंदर जो है ना वो विटामिन ई बीड्स ही शामिल है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ही प्रोटीन में अंदर जाते हैं।

0: खूबसूरती को बढ़ाते हैं, आपके चेहरे को निखारते हैं और आप लोगों को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश, ताकि आप लोगों को परफेक्ट वाला निखार मिले। और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, तो हम आप लोगों से इजाजत लेंगे और इसी के साथ साथ आप लोगों से और हमारी जो मुलाकात है वो कल वाले प्रोग्राम में होने वाली है, यानी कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हम आप लोगों के साथ मौजूद फन करते हैं, बातें होती हैं, खूबसूरती की बातें करते हैं और आप लोगों को ब्यूटी टिप्स देते हैं, ठीक है ना। तो आप हमारा जो है ना ऐसे ही साथ दिया करें जैसे आप देते हैं। इसी के साथ साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें।
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: जडे मां पांजो ख्याल।
3: अब GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

हक वारी जंग रुगो बिन मुल्कन जी जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो ऑपरेशन बनियाल मरसूस की कामयाबी की साल पूरो थियण जी थियो में कोठियाल तकरीब के खिताब कयो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो त अकबरी जंग 7 मई जी वेझी वारी रात खां 10 मई ताईं दुश्मन असांजे क़ौमी वकार खे आज़माइण जी नाकाम कोशिश कई। मई 2025 जी जंग का ओचितो ईंदड़ जंग न हुई। बासी में बि दुश्मन पाकिस्तान ते बेबुनियाद ऐं हथ ठोकिया इल्ज़ाम लॻाइण जी कोशिश कई पर हकड़ी जंग में भारतीय जहाज जो मुंहुं तोड़ जवाब ॾिनो पियो। पाकिस्तान दुश्मन खे हर भेरे शिकस्त जो मुंहुं ॾिसणो पियो। ऑपरेशन बनियाल मरसूस खे 1 साल मुकमल थियण ते GHQ में मुनक़द ख़ासि तकरीब खे ख़िताब कंदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो त दुश्मन ॼाणे वठे पाकिस्तान ख़िलाफ़ अॻिते अगराई जा असर इंतिहाई ख़तरनाक ऐं तकलीफ़ ॾींदड़ हूंदा। भारत जो ख़्वाब आहे त पाकिस्तान खे अस्तरी जारियत ऐं सफ़ारती अकिलाई जो निशानो बणाए तवाज़ुन तब्दील कर ख़्वाब हुन जे कद ऐं सलाहियत आहे जेको पाकिस्तान कॾहिं बि कामयाब थियण न ॾींदो। फिदा मज़ारनि ऐं पाक फिज़ाया जे शाहिननि दुश्मन जे 26 खां वधीक फ़ौजी हथनि खे कामयाबीअ सां निशानो बणायो। अवाम ऐं क़ौमी क़यादत जो पैगाम आहे त मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी सरहदी सलामती ऐं क़ौमी वक़ार ते को बि था क़ाबिल क़बूल नाहे। भारत जंग जे नतीजे में थियल जानी ऐं माली नुक़सान जी क़ीमत ईंदड़ वक़्तनि ताईं अदा कंदो रहंदो।

पाक फौज के जदीद घुर्जन से लेस करण ला डिफेंस फोर्सिस हेडक्वार्टर्स कायम कर छो। बरदार इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक गडियल दिफाई मुआहदो असां जी सफारती कामयाबियों में सब का वड़ी कामयाबी है। अज पाकिस्तान पंज असराती जिम्मेवारानी अणधुरी सफारतकार जरिए तारीखी अमन गाल मेजबानी कर रो है। फील्ड मार्शल सैद आसम मुनीर पंज खिताब में असी हर महाज से कश्मीरी अवाम की सियासी सफारती इखलाकी मदद जारी रखी। असाजी मंजिल वो मकाम है जिनो ख्वाब असाज बुजुर्ग डिठो हो। पाकिस्तानी कौम असाजी ताकत है, असी कौम की कुवत आयो। पाकिस्तान जो मुस्तबिल इंशाला तमाम घणो रोशन है।

0: रंग की जमीन हर जाय है, हल हल हल हर सोमे में आशा की, हर हर दिल पर है बच्छाई है, गाले हैं खुदा का आभार है, हम लड़ने के लिए तैयार है हम।
1: Between the people, the government, and the armed forces.

0: Run.
1: हक जी जंग में भारत जी प्रमनाक शिकस्त के एक साल मुकम्मल, अज समूरे मुल्क में फतह जो जश्न मल्हाया पे वे। जीएचक्यू रावलपिंडी में शानदार तकरीब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में मेहमान खास तौर शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मेयर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु ए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ शहीदन की यादगार से हाजिरी। गुलदस्तो रखियो, फातह खानी कई। ISPR पारा जारी कल बयान में कौम की हिमायत से हथियारबंद फौज सभी अंदरूनी ए बाहरी चैलेंजन के मुंह डेण मुकम्मल तौर से तैयार है। जंग में फतह हथियारबंद फौज की तैयारी चाह ए पेशावराना सलाहत जो सबूत है। हक की जंग में कामयाबी आवाम जो हथियारबंद फौज के एतमाद के मजबूत किया है। भारत खिलाफ ऑपरेशन महर का हक की कामयाबी के एक साल मुकम्मल थे सदर आसिफ अली जरदारी ए वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कौम ए पाक फौज के बधाईं। सदर आसिफ अली जरदारी चाहे पाकिस्तान अमन पसंद रियासत है पर हर जारियत जो भरपूर जवाब डेण जानू था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कैद में पाक फौज दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब दिनो। भारत के गैर कानूनी कब्जे हेठ परारल कश्मीर जो मसलो ठारान मुताबिक हल थे। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की इखलाकी ए सफारती हिमायत जारी रख। वजीर आजम शहबाज शरीफ पैं पैगाम में दुश्मन खिलाफ कामयाबी से अल्लाह तला बेशुमार नेमत ए एहसान लाइ सजो करण जो ढी है। अज असा उन अजम हिम्मत ए साबित कदमी के याद कर रहा हूं जहां पाकिस्तान आजमाइश के वक्त में डेखारी ए दुश्मन के जबरदस्त शिकस्त डी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: क्या देख रहे हो? बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 500 पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुँचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
7: पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं।
8: भारतीय मीडिया की जानिब से भी अपने तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी गई है।
9: छठा तैयारा MiG-29 है जिसको पाक फजाइया ने अपनी कार्रवाई में तबाह कर दिया है।
10: झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना।
11: नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स।
12: इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे।
10: 10 मई शाहीन, जमीन का सीना दहलाते मजबूत कदम, समंदर में फैली खामोश ताकत और वो मार्कतुल आरा क़यादत जिसने सर किया मार्काए हक, जिसकी गूंज 7 समंदर पार दुश्मन को लरता गई। दूर अंदेश क़यादत और जिगरत और बहादुरी का इजहार, मादरे वतन से लाजवाल इश्क और शौके शहादत की आला मिसाल। हमारी हर सांस जज्बाए जुनून और जवां, हर परवाज हर उड़ान वतन की हुर्मत के नाम।
13: Even the shooting down of those 6 planes was Pakistan showing restraint. Pakistan had 20 Indian planes locked that night.
10: Markai Haq, ek fatah, ek paigham, ek Pakistan.
14: Pakistan, hamesha zindabad, hamesha zindabad, hamesha zindabad.

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: जाने जहां, देखिए 22 दिसंबर से हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: ये yeah!

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: कर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: रोल कैमरा एक्शन।
3: जनक अली खान आप सबको खुशामदीद कहती है। जनक जहां में आने का बहुत बहुत शुक्रिया।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। ये 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारो डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नई का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी।
4: तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक शानदार इनाम जीतने का मौका पाओ। 600 सीसी कार, साथ ही स्मार्टफोन और 538 शहरों में बैंक अल अबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल अबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
5: बैंक अल अबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: जीए लतीफ।
7: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
8: जंगी जुनून और महदूद जाहिरियत के गुमराह उन सब को देखिए। पाकिस्तान पर नाजायज जंग मुसलसल करने और ताकत के ज़ोन में तंग नजर और कलील मुद्दती सियासी वाली मुकासद हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हक महज दो मालिक या वाद के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि दरहकीकत ये दोनों नज़रियात के दरमियान एक फैसला मौका था, जिसमें अल्लाह फजल से हक फतायाब और बातिल हज़ीमत से दोचार हुआ। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की इमा पर फितना अल-ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान की पुष्प बनाना ही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज और समाजों का मुकम्मल खात्मा करे।
9: हकवारी जंग रुगो बिन मुल्कन की जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर जो ऑपरेशन बनारन मरसूस की कामयाबी के साल पूरे थे जीएच क्यू में कोठहल तकरीब के खिताब।
10: वाला स्मार्ट एसी लो बिल मुड चिल माई जिया,
11: इसमें है हाई क्वालिटी पीसी।
9: قومی وقار اکمل تھن تے جی ایچ کیو میں منعقد خاص تقریب کے خطاب کردے فیلڈ مارشل عاصم منیر چو تو دشمن جانے وٹے تو پاکستان خلاف وقت اگرائی شاہ اثر انتہائی خطرناک تکلیف ڈیندڑ ہوں۔ بھارت جو خواب آئے تو پاکستان کی اسٹے جا رہا سفارت کے کھلائی جو نشانہ بڑھائے خطے میں طاقت جو توازن تبدیل کرے۔ یہ خواب ان کے قد صلاحیت کا گھنو ہے جو کو پاکستان کرے بھی کامیاب تھن نہ ڈیند فتح مزار پاکستان فضایا کے شاہین دشمن کے چھوی کا वधीक फौजी अदन की कामयाबी से निशानो बढ़ाया। आवाम ए कौमी क्यादत जो पैगाम है तो मुल्की खुदमुख्तियारी सरहदी सलामती ए कौमी वकार के को ठा कबूल ना है। भारत जंग नतीजे में थियल जानी ए माल नुकसान की कीमत इंदड़ वक्त तई अदा कंदो रहंदो।
7: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ये मटियार एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी दादा नियर नई का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज।
3: मुझे यार रखे तो मुखा परसी पे लाल दीवान चवे सदाम नवाब पिता फी चवे मुझे यार रखे तो मुखा परसी पे

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीत के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक कलबीत के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीत से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक कलबीत, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खानी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे की करो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: मेरी।
1: जी जी जी सुनाए।
0: लेकिन हमें एहसास होना चाहिए ना।
1: बिल्कुल एहसास होना चाहिए, और अगर एहसास है तो हम इंसान है ना। अगर हमें एहसास ही नहीं तो फिर हम इंसान किस चीज के हैं?
0: वो अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों में और जानवरों में पहचान के लिए यही बात रखी, जिसके पास एहसास और इंसानियत है ना वो इंसान इंसान है, अगर जिसके पास ये दोनों चीज नहीं है वो इंसान जानवर है।
1: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
0: तो आज ये दिन जो है ना हमारे लिए अच्छे लिए है, और हम आपको भी वेलकम करते हैं। आज हमें बहुत खुशी हुई, और जुमे वाला जो दिन था ना हम आपका शो तो सुन रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूरी थी जो हम आपका शो नहीं सुन पाए।
1: अच्छा, तो आपने दिल से दुआ की थी और फिर दिल से मुझे याद किया, तो देखे मैंने अचानक से एक प्रोग्राम क्रिएट हो गया और मैं आपके साथ आ गया।
0: तो आज हमारी एक फरमाइश बनती है, लेकिन अगर आप प्ले करें तो
1: मैंने अभी गाना लगाया हुआ है, कब से वो चलाया नहीं है, माँ ओ मिठड़ी माँ बाय मुमताज लाशारी, तो वो गाना सुनवाने जा रहा हूँ। आप अपनी फरमाइश बता दें मुझे, तो इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करता हूँ।
0: सर ये अदरफ मक्सी का गाना है, अदरफ मक्सी का।
1: जी जी।
0: भली तबाही थे पर इश्क ने कर दो।
1: अच्छा, तबाही भले थे इश्क ने चढ़ जो। सही है, पांजे राधे ने मानने को मजबूत हो जन खपे।
0: जी हाँ बिल्कुल।
1: सही है, सही कहेंगे डेडिकेट कंदाओ।
0: सर ये मुझे प्यारो दोस्त ममता इरलंद दोस्त लक्ष्मी रिजनी साहब।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही।
0: जवाहर मोहन बच्चन छपाणी
1: ठीक है,
0: वालेकुम
1: असलम, थैंक यू सो मच। अदा पांच खास ख्याल रखिए। ओके ओके ओके ओके, हम चलते हैं जनाब एक अदद कमर्शियल ब्रेक की जाने, उसके बाद एक अदद जबरदस्त गाना आपके लिए प्ले करेंगे। तो आप सुनते रहिए GFM88 नेटवर्क से, आपका अपना शो है जनाब आई लव यू माँ विद अशफाक नाज़िर।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
3: फातिह मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
2: GFM88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी, मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी, मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
5: पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं।
6: भारतीय मीडिया की जानिब से भी अपने तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी गई है।
7: छठा तैयारा MiG-29 है जिसको पाक फजाइया ने अपनी कार्रवाई में तबाह कर दिया है।
8: झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना।
9: नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स।
10: इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करें और हम और इनके जहाज गिराएंगे।
11: 10 मई एक तारीख साज पता, फजाओं में गरज पेश आई, जमीन का सीना दहलाते मजबूत कदम, समंदर में फैली खामोश ताकत, और वो मार्कतुल आरा कयादत जिसने सर किया मार्काए हक, जिसकी गूंज सात समंदर पार दुश्मन को लड़ता गई। दूर अंदेश कयादत और जिद्दत और बहादुरी का इजहार, मादरे वतन से लाजवाल इश्क और शौके शहादत की आला मिसाल, हमारी हर सांस जज्बाए जुनून और जवां, हर परवाज हर उड़ान वतन की हुर्मत के नाम।
12: Even the shooting down of those 6 planes was Pakistan showing restraint. Pakistan had 20 Indian planes locked that night.
11: Markai Haq, ek fatah, ek paigham, ek Pakistan.
13: Pakistan, hamesha zindabad, hamesha zindabad, hamesha zindabad.
14: Kya dekh rahe ho? Ye sab to tum bahar se rakam vasool karne par bhi jeet sakte ho.
15: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
16: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
17: हमारे शहर सखर में होम्योपैथिक में 43 साल जो तजुर्बो रखंदड़ प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद मरीजन जो मुआइनो कर रहे है हर किस्म के आसाबी अमराज जोड़न जो सूर मैदे में जलन कब्ज तेजाबियत गुर्दन की पथरी बवासीर हाजमे की खराबी ऐं बियन बीमारियन जो बगैर ऑपरेशन होम्योपैथिक तरीका इलाज मुताबिक मरीजन जो
18: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
19: It's 3 PM. This time check is brought to you by
20: जडे मां
21: मुझे यार रखे तो मुखा परसी

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज। कुछ

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान माजी में भी इल्जाम तराशी, मुबादला आरई, जंगी जुनून और महदूद जहीरियत के गुमराह तसव्वुर के लिए पाकिस्तान पर नाजायज जंग मुसल्लत करने और ताकत के ज़ोन में तंग नजर और कलील मुद्दती सियासी वास्तवी मकासद हासिल करने की नाकाम कोशिश करता रहा है। मादाए हक महज दो मालिक या वाद के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि हकीकत ये दोनों नज़रियात के दरमियान एक फैसलकुन मुआवका था, जिसमें अल्लाह के फजल से हक फतायाब और बातिल हज़ीमत से दोचार हुआ। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की इमा पर फितना अल-ख्वारिज और फितना अल-हिंदुस्तान की पुष्पनाही ही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज और अमाज गांवों का मुकम्मल खात्मा करे।
2: हक वारी जंग रुगो बिन मुल्कन न पर बिन नजरियन में फैसलाइती जंग हुई। फील्ड मॉडल जो ऑपरेशन बुनान मरसूस की कामयाबी के साल पूरो थियण ते जीएचक्यू में कोठायल तकरीब के खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त 7-10 मई ताईं दुश्मन असांजी कौमी वकार खे आज़माइण जी नाकाम कोशिश कई। दुश्मन ॼाणे वठे त पाकिस्तान ख़िलाफ़ अगराई जा असर इंतिहाई ख़तरनाक ऐं तकलीफ़ ॾींदड़ हूंदा। भारत जो पाकिस्तान खे सफारती अकेलाईअ जो निशानो बणाए खिते में ताक़त जो तवाज़ुन तब्दील करण वारो ख़्वाब संदसि कद ऐं सलाहियत खां घणो वधीक आहे। पाक फिज़ाईअ जे शाहीननि दुश्मन जी 26 खां वधीक फ़ौजी हदफ़नि खे कामयाबी सां निशानो बणायो। अवाम ऐं क़ौमी क़यादत जो पैगाम आहे त मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी, सरहदी सलामती ऐं क़ौमी वकालत ते को बि ठाह क़बूलण जोॻो नाहे।

पाक फ़ौज खे जदीद घुर्जन सां लेस करण लाइ डिफेंस फोर्सिस हेडक्वार्टर्स क़ाइम करे छॾियो। जेको ख़्वाब असांजे बुज़ुर्गनि डि॒ठो उहो ई असांजी मंज़िल आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनि चयो आहे त बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब सां स्ट्रेटजिक गलियल दिफ़ाई मुआहिदो असांजी सफ़ारती कामयाबियुनि मां सभ खां वॾी कामयाबी आहे। अॼु पाकिस्तान पंहिंजी असराइती ज़िमेवारणी ऐं अण धुरी सफ़ारतकारी ज़रिए तारीख़ी अमुन ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी करे रहियो आहे। हर महाज़ ते कश्मीरी अवाम जी सियासी सफ़ारती ऐं इख़लाक़ी मदद जारी रखंदासीं। पाकिस्तानी क़ौम असांजी ताक़त आहे ऐं असीं उन जी क़ुवत आहियूं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ऐं नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ शहीदनि जी यादगार ते हाज़िरी भरी, गुलदस्तो रखियो ऐं फातिह फ़ानी बि कई।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। टाइम सुबुह 10 खां शाम 6 वॻे ताईं। एड्रेस: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक, नज़्द दिलवारी अस्पताल, सखर। हर जुमे ऐं आचर ते चेकअप फीस बिल्कुल मुफ़्त। रश खां बचण ऐं नंबर

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सही बिल्कुल
1: पाण रोई उते बि रोई करे माउ जे नाले ते चई अमां तुंहिंजे करे या नथी पा सघे छॾे मोटांदो तुंहिंजी इज़त
0: जी बिल्कुल
1: वधीक आहे तुंहिंजे चवण जे करे मोटे थो अचां
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: जॾहिं उहो मोटी आयो नदी पाक मस्जिद नदीअ में आयो बाबा ग्राम खां पुछा कई हिकु माण्हू आयो मूं ते दीदार मां
0: जी
1: इहो हिकिड़ो अवेश करण महिल शख़्स यमन जो रहाको ॿुधायो पियो उहो आयो हुयो उन हीअ ॻाल्हि हीअं थी कयां वञां थो भाउ मूंखे हीअं थियो
0: जी
1: जॾहिं वापसि मोटी आयो उते मां वधीक माउ खे चई मां तुंहिंजे करे थो चयो पुछियसि मां त तूं नदी पाक जो दीदार करे चई न तो इहो चयो त नदी पाक मस्जिद नदीअ में हुजे त दीदार करे अचां त वापसि मोटिजे
0: जी जी
1: उन जे करे मोती आयो दीदार मूं न कयो नदी पाक धन खे ख़बर पई जॾहिं नदी पाक उतां हज़रत अली ऐं हज़रत उमर खे मोकिलियो पंहिंजो सिबो मुबारक ॾेई चई वञो फलाणे मुल्क में फलाणे इलाइक़े में हीअ अवेश करणी नाले हिकिड़ो शख्स रहंदो आहे उन खे ई मुंहिंजो जुबो सलाम ॾींदो वञी उन खे चइजो त मुंहिंजी उमत लाइ दुआ घुरे
0: जी जी
1: जॾहिं उतां यमन ते रवाना थिया हज़रत अली हज़रत उमर पुछाईंदा पुछाईंदा यमन जे इलाइक़े जंहिं में रहंदो हुयो उते पुछा कयूं अची थो हिकिड़ो चिरियो आहे हिकिड़ो दीवानो आहे जेको फलाणी जाइ ते उठ चाढ़ींदो आहे करणी नालो उहो शख्स
0: सही सही सही सही
1: पोइ जॾहिं उते पुॻा सुबुह मुबारक असां ॾिनो अथनि ऐं हुन खां उमत जे लाइ दुआ घुराई
0: सही
1: पोइ इन में तव्हांखे मुंहिंजे सबक मिले थो त फरमान प्रसाद भाउ जी कजे ख़िदमत कजे हुन जे चवण जे
0: सही सही सही बिल्कुल बिल्कुल छो त अमर जी वॾी शान हूंदी आहे ऐं हुनखे असां हमेशह हुनखे अहमियत ॾियण खपे पंहिंजी ज़िंदगी खां बि वधीक थैंक यू सो मच अदा तव्हां जी जी
1: कॾहिं बि ईअं न चइजे अॼु समय ते नबी पाकन फरमाइनि था त माउ खे सोन पियो हुजे घर में ॿाहिरि कहिड़ी बि कीमती शइ पई हुजे
0: जी जी
1: ॿाहिरि उछलाए छॾे उहो पुत्र खे हक़ु न आहे या औलाद खे हक़ु न आहे छो एतिरो चए थो मां इहा छो उछलाए
0: हा बिल्कुलु बिल्कुलु मां जी वॾी शान आहे मां जी वॾी शान आहे थैंक यू अदा थैंक यू सो जी जी
1: अहमद मुगल जो कलाम ॿुधाईंदा जेको
0: ओके मां सर्च करे तव्हांजे लाइ प्ले कंदुमि इनशाला जी जी
1: चंदाणी
0: जी जी
1: एयरपोर्ट सखर खां
0: जी जी
1: भूरल फकीर बंबरो नफ़र बलोच कराची
0: ओके ओके अदा थैंक यू सो मच पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो थैंक यू सो मच बिल्कुल जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ारा खुशी सालार समय जो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं ज़ारा खुशी सालार समय जो कश्यप ज़ारा उनकी फरमाइश पर हम ये गाना जो उन्होंने फरमाइश किया था वो तो हम चला चुके हैं लेकिन अब हम चला रहे हैं अमर जी जल जोरा तो सुनिए हमारे साथ रहिए।

0: Brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Keef ka Sufi thikana,
3: Fadiye Mehran, Sindh ki ek aur pehchan.
2: GA FM 88 Network,
3: Sindh ki awaaz.
4: Hello Varna, khabar na hai main har waqt teri thakela thakela shoon di aaya.
5: तू खाएंगी चाहे स्कूल में बाकी बारंजी मंझंजी मानी डिठिया है
6: सोचो जरा तुम

0: केन है तो तुम रोज अंडा खाराजो मंझन जी मानी में सूफ दीजो तो जियो स्कूल में मुआगुर थकेल थकेल न हो जाए।
1: बारन में कमजोरी अक्सर जरूरी गिजाई जुजन की घटताई हुंदी है जेका उनन जे सिखण जी सलाहियत में

0: केर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने थो। टाइम सुबह 10 का शाम 6 बजे ताई। एड्रेस सखर होम्योपैथिक क्लिनिक नज़्द दिलवारी अस्पताल सखर। हर जुमे आई आचार ते चेक अप फीस बिल्कुल मुफ्त। रश का बचन आई नंबर वठन लाए 0327 84 60 746।
1: खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
2: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
1: DHMS सिंध,
2: RHMP इस्लामाबाद,
1: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
2: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
1: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
2: कमर दर्द,
1: अर्कुन निसा,
2: जोड़ों का दर्द,
1: हेपेटाइटिस,
2: वजन की कमी या ज्यादती,
1: बे औलादी,
2: गंजपन का मुकम्मल इलाज
1: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
2: टाइम
1: हफ्ते से जुमेरात
2: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
1: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
2: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
1: राब्ते के लिए
2: 0326 22 00 440।
3: सचल की सरमस्त धरती
4: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
3: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से आफ्टर द ब्रेक। और बहुत जबरदस्त गाने के बाद हम आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। मदर्स डे स्पेशल शो है जनाब, आई लव यू माँ, और आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन हमारे साथ?
1: अब्बास मलिक।
0: अब्बास मलिक साहब, कैसे हाल चाल है आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक।
0: हाँ बिल्कुल मजे में। ये बताओ, आज मदर्स डे स्पेशल शो GFMH8 नेटवर्क ने आपके लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम अरेंज किया है। ये बताइए, माँ के हवाले से आपको आपके क्या तासुरात हैं और माँ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में?
1: आपका सवाल जिनकी

0: आए हैं हयात, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे और
1: आमीन
0: उनकी खिदमत करें, उनकी खिदमत करें, माँ के नेमल बदल कोई भी नहीं कहीं भी नहीं मिलेगा.
1: एग्जैक्टली.
0: और में से ये है कि बंदा जो भी हमारी माँ या बाप जो भी एजेड हो जाते हैं जितनी हो सके उनकी खिदमत करें,
1: उनकी खिदमत
0: करें. सब किसी के पास, हाँ सब किसी के पास माँ नहीं होती ना.
1: हाँ, हर किसी के पास माँ नहीं होती, हयात
0: माँ नहीं होती. हाँ
1: बिल्कुल हयात. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आप ये बताइए कि आपको अपनी मामा की कौन सी बात याद आती है बहुत ज्यादा, कि वो उनमें ये क्वालिटीज होती थी और वो बहुत ज्यादा मतलब उसकी वजह से लविंग पर्सनैलिटी थी.
0: हम मतलब बाहर कहीं नहीं हो तो इंतजार होता था, हम तो इधर सोए हुए, हम जैसे एंट्री करते थे उनको पता चल जाता.
1: माँ को इल्हाम होते हैं, माँ को औलाद के हवाले से इल्हाम होते हैं. बिल्कुल.
0: हम अभी तक को क्या नहीं मिला माँ के बाद, वो माँ ही है अल्लाह ताला, जो जिनकी माँ नहीं है अल्लाह ताला उनके जन्नत दोस्त में आला जो मकाम दे वो हयात उनको.
1: आमीन आमीन. वो कहते नहीं है कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है. तो माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता और माँ तो एक अनमोल हस्ती होती है जिसका जिसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं होता.
0: हाँ जी. हाँ. और माँ का प्यार जो है वो कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी.
1: बिल्कुल.
0: बोलते हैं ना कि मसला नहीं है चल जाता है, मगर माँ के साथ जिया जाता है बाद में तो बस जिंदा ही रहता है बंदा बस.
1: हाँ बिल्कुल. बाद में बस जिंदा रहता है. माँ की कमी हमेशा फील होती रहती है क्योंकि माँ, आपने जैसे कहा था कि माँ हमेशा नोट करती रहती है कि मेरा बच्चा बाहर है, वो आपको आपको लगेगा नहीं कि वो घर पे आपका इंतजार कर, लेकिन जब आप जाएंगे तो वो दरवाजे पे खड़ी होती है. क्योंकि ये कैसा कर्ज है, ऐसा कर्ज होता है जो हम अदा ही नहीं कर सकते. वो किसी ने खूब कहा है, मुनव्वर राना का एक शेर मुझे याद आ गया है, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है. तो मतलब हम माँ के किसी भी अमल का, किसी भी प्यार का कर्ज लौटा ही नहीं सकते ना.
0: वैसे तो हर पैदल से अच्छी बात है मिलाना.
1: जी जी.
0: 10 तारीख देना मिलता है, मगर माँ के अलावा कोई देनी नहीं होगा, माँ के साथ ही हर दिन है.
1: सही. माँ के
0: साथ जी सके बंदा माँ के साथ.
1: एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. तो आप अपने तमाम दोस्तों को, कोई सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से?
0: बस यही है कि जितना हो सके अपनी माँ को टाइम दें, क्योंकि हम बोलते हैं ना बाहर टाइम देते हैं दोस्तों, तो हम कहते हैं हाँ तो घर ही होगा.
1: एग्जैक्टली.
0: माँ को बात बहुत याद आती है, इसलिए जितना होंगे.
1: हाँ, जितना हो सके अपने पेरेंट्स को टाइम दें, माँ बाप को टाइम दें.
0: हाँ, वालदेन को जितना टाइम दे सकें,
1: क्योंकि ये टाइम फिर दोबारा से नहीं आएगा. हम चाहे लाख कोशिश कर लें,
0: हाँ
1: ठीक ठीक ठीक.
0: हम फील करते ना, अभी हमको पता है ना.
1: एग्जैक्टली.
0: हम पहले सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर
1: हाँ, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हम माँ को खो देंगे, हम बाप को खो देंगे. हम कभी ये नहीं चाहते ना, हमारा दिल ही नहीं मानता कि हम ऐसा हो भी सकता है.
0: अभी तक हमारी माँ को कुछ साल हुए हैं ना.
1: एग्जैक्टली.
0: अभी तक

0: टाइम दें, माँ बाप को टाइम दें, हम चाहे लाख कोशिश कर लें, लाख कोशिश कर लें। ठीक ठीक ठीक,
1: हम फील करते हैं ना, अभी हमको पता है ना,
0: एग्जैक्टली
1: हम पहले सोचते कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ।
0: हाँ, क्योंकि हम खो देंगे, हम बाप को खो देंगे, हम कभी ये नहीं चाहते ना, हमारा दिल ही नहीं मानता कि हम ऐसा हो भी सकता है।
1: अभी तक हमारी माँ को कुछ साल हुए ना,
0: एग्जैक्टली
1: अभी तक हमको देती है, फील होता है माँ का प्यार।
0: बिल्कुल। तो अब्बास, बहुत अच्छी आपसे बातचीत हुई, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा आपके पीछे बैकग्राउंड में कोई गाना, कोई सुरीला सिंगर आया हुआ आई थिंक बाहर मोहल्ले में आपके, या कोई
1: नहीं वो मांगने वाले हैं?
0: अच्छा, गदागर है, बड़ी सुरीली आवाज है उनकी, बाय द वे। चले ठीक है, थैंक यू अब्बास, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जनाब, हमारे साथ अब्बास, और अब टाइम हो जाता है जनाब एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, क्योंकि आपसे टाइम बातें जब करते हैं तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। चलते हैं एक अदद कमर्शियल ब्रेक के जाने।
2: नौ शहरों, मीरपुर खास, लाड़काना, सक्खर, गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज। जीए FM 80।

0: Faith Network. छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाने वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो, जीए हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज। हमारे शहर सखर में होम्योपैथिक में 43 सालन जो तजुर्बो रखंदड़ प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, मरीजन जो मुआइनो कर रहे आहे। हर किस्म के आसाबी अमराज, जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, कब्ज, तेजाबियत, गुर्दन जी पथरी, बवासीर, हाजमे जी खराबी, बेन बीमारियों जो बगैर ऑपरेशन होम्योपैथिक तरीका इलाज मुताबिक मरीजन जो इलाज कर रहे आहे। प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान शाम 5 वगे ताई जो मोकल एड्रेस आगिक क्लिनिक पुरचोक राबते लाए 0326004040।
1: होम्योपैथिक इलाज शहर सखर गैस बदहजमी कमी बादी बवासी जो है रोजा जे खां शाम 5 बजे ताई जुम्मो मोकल एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप नजद PSO पेट्रोल पंप रेस कोर्स रोड सखर राबते जे लाए 0311208260 0333714311।
2: सचल की सरमस्त धरती
3: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: GAFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: ऑलराइट गाइस, वक्त बहुत ही कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। आज का दिन उस अजीम हस्ती के नाम जिसे हम माँ कहते हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम
4: जी, यदा खेरा सा सबनी सागर
5: मेहरदीन
4: साहब के हाल चाल अव
5: शुक्र अलहमदुल्ला अल्लाह जे सन
4: बिल्कुल ठीक ठाक। मेहरदीन साहब कंदा छा आयो ता
5: असा माल करना।
4: अच्छा माशाल्लाह, ता जो कम कर के तो हले
5: जबरदस्त सही।
4: अच्छा अदा मेहरदीन साहब यो बतायो, आज मदर्स डे मनायो पे वने, माउन जो आलमी डे मनायो पे वने, तो ता इन हवाले से छा चवन चाहे दो
5: सही माल जेडी कती नाइन।
4: एग्जैक्टली
5: जी ना,
4: बिल्कुल बिल्कुल। जी माँ पी पेरेंट्स जो पांजो माँ पी जो हमेशा ख्याल रखो। आज मदर्स डे है तो डेफिनेटली अस मदर्स से गलायूं था, कल फादर्स डे हों यकीनी तौर फादर से भी गलाइंदे, पर ये ना तो सिर्फ माँ की कदर कर पीर कदर कर।
5: हाँ पी प्रोग्राम में गाला ना सही।
4: नहीं बिल्कुल, आज मदर्स डे आता स्पेशली तौर अस मदर्स के जो आए हाईलाइट किया, मदर्स के उन अहमियत के बारे में बुझाऊँ था। अदरवाइज अस ये हों हमेशा पेरेंट्स की कदर कर।
5: जी जी जी
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेहर साहब ये बुधा गानों तो लाया कें नारा करना चाहो मदर्स जो आज डेफिनेटली मदर्स डे ना जी जी
5: और गुलाम अब्बास गुलाम यासीन और रहमतुल्लाह जाफरी कराची।
4: सही सही सही
5: ठीक
4: है। बुधा कोशिश था क्यों
5: सनम मारवी
4: कड़ो ठीक है। थैंक यू सो मच मेहर भाई, थैंक यू सो मच, मैं खास ख्याल रख जो। और जनाब अब लेते हैं शो की एक और कॉल, आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर और हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, हम चाहते हैं कि आप आए और भरपूर तरीके से शिरकत करें। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम।
4: केरे सा सबनी सा गद माशाल्लाह। रुस्तम भाई केड़ा हाल चाल है तांजा, ठीक ठाक आयो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुश आया। तुम यू बुधायो बनी
6: बारे यो कम कंदा हूं।
4: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। यो बुधायो त आज मदर्स जो आलमी डे मल्हायो पे वने, त तहां छा चवण चाहियो था?
6: मां यो चवण चाहिंदस असा मां जो को मना थोरो एहसान लाहे नथा सघूं हिकड़ो थोरो।
4: सही सही सही।
6: हा असां मना वो नव अठ नव महीना पंहिंजे पेट में पंहिंजे बचे खे ताते थी वरी बि उन लाइ सभु ओजागा निंडू सभु फिटाए थी।
4: एग्जैक्टली, असां उन्हनि जा एहसान उन्हनि जा कर्ज़ लाहे नथा सघूं कंहिं बि सूरत में।
6: न बिल्कुल बिल्कुल, उन्हनि जो को बि

0: थोरो नथा लाइ
1: एक्ज़ेक्टली बिल्कुलु ठीक चयो आहे तव्हां त पुनू भाई इहो ॿुधायो त हाणे गानो प्ले कयां थो कंहिं दोस्तनि खे सलाम ॾियणु चाहियो था
0: रुस्तम
1: भाई
0: जी बस दोस्त पिया ॿुधनि दिलीप कुमार मेंघवार पियो ॿुधे ऐं चोवन कुमार कोली कुर्बान अली ख़ासि केली
1: जी
0: ऐं जेके बि दोस्त ॿुधनि पिया सभिनि खे सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम थैंक यू अदाब थैंक यू किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती हैं किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती हैं टिफिन रखती है मेरी माँ तो बस्ता मुस्कुराता है तो जनाब आज माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन हमने आपके लिए स्पेशल शो अरेंज किया जिसका नाम था आई लव यू माँ अशफाक न्याजी आपके साथ रहा दो घंटे तक और माओं के आलमी दिन के मौके पर हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वालदैन एक साय की तरह हैं जिनकी ठंडक का एहसास हमें उस वक्त तक नहीं होता जब तक ये साया सर पे मौजूद रहता है जो ही ये साया उठ जाता है खुदा न खास्ता तब हमें एहसास होता है कि हम क्या खो बैठे हैं आए इस बरस अहद करते हैं कि हम इस अजीम हस्ती को दिलो जान से भरपूर खिदमत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया इसका कुछ फीसदी हक अदा कर सकें आप अपनी माँ को किसी भी तरीके से यह एहसास दिलाने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों कि आपकी जिंदगी में सबसे खास और मोहतरम हस्ती आपकी माँ ही है तो माओ की कदर कीजिए जनाब माँ बहुत अनमोल हस्ती है अब हम प्ले करते हैं जनाब एक बहुत प्यारा सा ट्रैक डेडिकेट करते हैं तमाम माओ को तो इस ट्रैक को सुनिएगा अशफाक न्याजी को दीजिए इजाजत इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी चलते चलते किसी प्रोग्राम में तब तक के लिए दीजिए इजाजत टेक केयर गुड बाय लव यू ऑल अल्लाह के बाद

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: सिर्फ 450 रुपयन में। खात्माए दर्द, मिलन जो हंध, बेड़ी चौक, नादरा ऑफिस के सामू, अल नूर दवा खाना, रोहड़ी, राप्ति जिले 0305-58-00-616। गर्मी, थकावट या दिल की बेचैनी महसूस करो पा, हाँ परेशान थियण की जरूरत ना है। पेश आहे शरबत रूहे राहत, कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवा के दे ताजगी, सुकून ऐं हकीकी राहत, दिल की धड़कन के मुतवाजन रखण, गर्मी के असर के घटाइण ऐं जिस्म के तवानाई देण लाइ शरबत रूहे राहत। रोजानो सिर्फ 1 गिलास ऐं महसूस करियो थकावट खां आज़ादी। कीमत सिर्फ 450 रुपया। शरबत रूहे राहत, मिलण जो हंध, मदनी तिबी दवाखानो, रजिस्टर्ड, फेज मोहम्मद रोड, गोश्त बाजार, गरीबाबाद, सखर। खमीस ऐं जुमो मिलण जो हंध, मदनी तिबी दवाखाना, मसान रोड, नस लाला शहजादा चौक, रोहड़ी। राब्तो 0302-3626-176। बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में दाखिला जो ऐलान साल 2026 लाए दाखिलाऊं जारी आहिन मुख्तलिफ़ शोबन में। BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं फिजिक्स, रियाजी ऐं शुमारियात जहिड़ा अहम प्रोग्राम्स। ह्यूमन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS केमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, BEd 4 साला, MS एजुकेशन 2 साला। मुस्तहक शागिर्दियाण लाइ स्कॉलरशिप्स भी मौजूद। एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइन, घट में घट 50% मार्कू इंटरमीडिएट लाजमी। उम्र की हद 35 साल। आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। ऑनलाइन अप्लाई करो www.apy.bnbwu.edu.pk। खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
1: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
0: DHMS सिंध,
1: RHMP इस्लामाबाद,
0: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
1: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
0: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
1: कमर दर्द,
0: अर्कुन निसा,
1: जोड़ों का दर्द,
0: हेपेटाइटिस,
1: वजन की कमी या ज्यादती,
0: बे औलादी,
1: गंजपन का मुकम्मल इलाज
0: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
1: टाइम
0: रात
1: 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
0: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
1: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
0: राब्ते के लिए
1: 0326-22-00-440।
2: हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो 1 क्रीम जी दूरी ते। पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, जंहिं में शामिल आहे SPF 30, सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ, कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात ख़तम करण लाइ, विटामिन सी, आर्बुटिन, जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ ऐं चमकदार ग्लो। रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो, नओ एतमाद। हर ॾींहुं हुजे 1 नओ ग्लो, 1 नओ कॉन्फिडेंस। हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।
3: अपने वतन की तरक्की के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जज्बाए हुब्बुल वतन।

का शुक्रिया कि जिन्होंने इंतहाई कम मुद्दत में स्टेट बैंक की खसूसी पेशकश रोशन डिजिटल अकाउंट को शानदार कामयाबी से हमकिनार करवाया। वतन से दूर होकर भी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट में सरमायाकारी से बेहतरीन मुनाफा हासिल किया। आज ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट विजिट करें, रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: हाथ में कुछ नहीं है।
1: प्यार को हमने जा बजा देखा।
2: अजीब अजीब तरह के रिश्ते आने लगे हैं माँ, तो सोच सोच के परेशान होती हूँ कितना लड़का क्या होगा।
0: एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम मुझसे पागलों वाली मोहब्बत करो।
1: कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब।
3: दिन में चमगादड़ देता है तुमने कभी? बिल्कुल वैसा हो जाता अगर उसका चेहरा न देखो तो।

0: मुझे मेरी औकात पता चल गई, मुझे मेरी औकात पता चल गई, तू मुझे साथ क्यों नहीं देता?
1: यार को हम जाहिर कहीं छुपा, यार को हमने जा बजा देखा।
0: इसकी शक्ल सलमान से नहीं होती। प्लीज मैं इन बुतों को पूछ थोड़ी रही हूँ।
2: पहले पहले अपने हाथ से बनाए हुए बुत से प्यार हो जाता, फिर अपने आप से इश्क हो जाता, फिर अपने आप को आदमी कामिल समझने लगता।

अगर मोहब्बत ये है कि आप उस इंसान को अपने जहन से बाहर ना निकाल सकें, उसके बारे में दिन और रात सोचते रहें, उससे बात करने के बाद यू होल्ड ऑन टू एवरी सिंगल वर्ड, यू आर ऑब्सेस्ड, तो हाँ मुझे है मोहब्बत।

0: कोई इश्क मानता है, कोई मोहब्बत मानता है, और जो ये सब कुछ नहीं मानता वो ख्वाहिश का खत्म होना मानता है।
1: कहीं आशिक ने आज
2: मैं बहुत डिफरेंट इंसान, मेरे साथ रहना आसान नहीं।
1: कहीं आशिक ने आज की सूरत
3: मुझे आसानियां पसंद नहीं।
1: सीना बिरयों दिल जदा देखा।
3: महंगे कपड़े पहन के चीथड़ों में फिरने वाले लोग हमें जानवर नजर आते।
1: यार को हमने जा बजा देखा।
3: दिल अजीब शहना अजीब चीजें मांगता है, अजीब चीजें करने को।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन। GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खांसी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल जी मटियारे पान सिक्स जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे,
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मसी मारू डुंगर खां भी दाधा नियर नहीं काचड़ो
2: लई। सिंध की हो तो आवाज भी से एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम,

टिन राउंड अप में अज अवां बुझी सघंदा। सिंध सरकार पारां कोटड़ीअ खे हैदराबाद सां मिलाइण जे लाइ नई पुल अॾण, हारिन ऐं ट्रांसपोर्टरनि जीअं मुहाणनि खे तेल सब्सिडी ॾियण, बाइका मोटरसाइकिलूं हलाईंदड़नि जे लाइ सिंध सेल्स टैक्स में छूट जो ऐलान करे छॾियो। वर्क्स एंड सर्विस खाते में नवाज़िशूं, एक्सीएन जा टे अहम अहुदा असिस्टेंट इंजीनियरनि हवाले, कार वहिंवार मुतासिर। सिंध में 50 सालनि जा बुज़ुर्ग बि वीसी शिप लाइ अहल करार।

बोर्ड जूं भर्तियूं सर्च कमेटी हवाले। वॾे वज़ीर पारां कराची जे शहरनि खे ईद जो तोहफ़ो। शाहराह भुट्टो ईद ते ट्रैफिक जे लाइ खोलण जो ऐलान। रिथामी देर ऐं मयार में कोताही बर्दाश्त न कबी। वज़ीर आला सिंध कोट डिजी उमरकोट ऐं नवकोट किला आलमी सकाफ़ती विरसे जी लिस्ट में शामिल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 जे इम्तिहान जा नतीजा जारी करे छॾिया। 70 उम्मीदवार कामयाब। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, जाली दवाउनि जो कारोबार, अवाम जे ज़िंदगीनि सां खेॾींदड़ निज़ाम। सिंध सरकार कोटड़ीअ खे हैदराबाद सां मिलाइण जे लाइ नई पुल अॾण हारिन ऐं ट्रांसपोर्टरनि जीआं मुहाणनि खे तेल सब्सिडी ॾियण, बाइका मोटरसाइकिलूं हलाईंदड़नि जे लाइ सिंध सेल टैक्स में छूट जो ऐलान करे छॾियो। काल वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल काबीना जे इजलास में 30 अरब रूपियनि जी तरक़ियाती, फलाही ऐं इस्लाही एजेंडा जी मंज़ूरी ॾिनी वई। इजलास में कराची, ठट्टो, सिजावल ऐं बदीन जे मुहाणनि खे फौरी माली रिलीफ फराहम करण जे लाइ 515 मिलियन रूपियनि जो फ्यूल सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾिनी वई। वॾे वज़ीर चयो त डीज़ल जे वधंदड़ क़ीमतुनि सबबि मच्छी जे शिकार में 20% घटिताई आई आहे। उन ई करे हज़ारे मुहाणनि जी रोज़गार खे ख़तरो पैदा थी वियो आहे। हिन स्कीम तहत 9,634 रजिस्टर्ड ॿेड़ियुनि होड़नि खे 1 खां 2 लख ताईं टारगेटेड मदद फराहम कई वेंदी। इजलास में मोटरसाइकिल मालिकनि खे मई में बि 2,000 रूपया तेल सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो कंदे 2 अरब रूपया जारी कया विया। इजलास में परगणे में बाइका हलाईंदड़नि ते लागू सिंध सेल्स टैक्स 5% खां घटाए 2% करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। उन सां गॾु 120 मिलियन जो फ़ाइदो थींदो। इजलास में वॾे वज़ीर माली कमेटीअ जी सिफ़ारिश ते हैदराबाद कोटड़ी विच में सिंधु दरिया ते 1.12 किलोमीटर डिघी हाईवे पुल जी इंजीनियरिंग डिज़ाइन जे लाइ 147.2 मिलियन रूपियनि जो कंसल्टेंट सर्विस लाइ ग्रांट जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वॾे वज़ीर चयो त उहा पुल मुल्क जे ॿियनि इलाइक़नि ॾांहुं अच वञ जी हल्की ऐं गरी ट्रैफ़िक जे लाइ वॾी सहूलियत साबित थींदी। सिंध काबीना वाइस चांसलरनि जे मुक़ररी जे लाइ उमिरि जी हद 62 खां वधाए 65 साल करे छॾी, जॾहिं त ज़रूरी तजुर्बे खे 15 खां वधाए 20 साल कयो वियो आहे, जंहिं में घटि में घटि 10 HEC जूं तस्दीक थियल अशातूं लाज़मी करार ॾिनियूं वयूं आहिनि। काबीना सिंध जे 7 तालीमी बोर्डनि जे लाइ ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स एंड सर्विस रेग्यूलेशन 2026 जी मंज़ूरी ॾिनी, जंहिं हेठि चेयरमैन, सेक्रेटरी, कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऐं ऑडिट ऑफिसर जहिड़ियूं पोज़ीशनूं हाणे मयारी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी ज़रिए भरियूं वेंदियूं। नए ज़ाब्तनि तहत चेयरमैन BPS 19 ऐं 20 जे लाइ उमिरि जी हद 40 खां 55 साल मुक़रर कई वई आहे, जंहिं लाइ मास्टर डिग्री, फर्स्ट डिवीज़न ऐं 15 सालनि जो सीनियर मैनेजमेंट तजुर्बो घुर्बल हूंदो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह कराची जे अहम तरक़ियाती रिथाउनि जो तफ़सीली दौरो कयो ऐं लाॻापियल अमलदारनि खे हिदायत कई त कराची बस रिपिड ट्रांज़िट रेड लाइन कॉरिडोर शाहराह भुट्टो ऐं पहलवान गोट रोड ते कम जी रफ़्तार तेज़ कई वञे, जंहिंखे हुन कराची जे अवाम जे लाइ ईद जो तोहफ़ो करार ॾिनो। वॾे वज़ीर चयो त वसीला मौजूद आहिनि, हाणे मूंखे ज़मीन ते नतीजा ॾियनि त मुक़रर वक़्त अंदर मुकमल थिए, जल्द रिलीफ़ मिले। वॾे वज़ीर मौसमियात ते फ्लाई ओवर जो कम नामुकमल ॾिसी फौरी तौर ते ॿीहर शुरू करण जी हिदायत कई ऐं यकीन ॾियारियो त फंड्स ऐं वसीला फराहम कया वेंदा। हुन चयो त शाहराह भुट्टो शहरांदर ट्रैफ़िक जे दबाउ खे घटाईंदी ऐं M9 ऐं N5 शाहराहुनि जे विच में राब्ते खे बहितर बणाईंदी। गरी ट्रैफ़िक शहर खां ॿाहिरि मुंतक़िल थी वेंदी, जंहिं सां कराची जे रहवासियुनि खे वॾो रिलीफ़ मिलंदो। वर्क्स एंड सर्विस खाते में अंधेर नगरी। सूबाई बिल्डिंग डिवीज़न कराची में असिस्टेंट इंजीनियर ते नवाज़िश। सूबाई बिल्डिंग्स डिवीज़न जे एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारनि 3 पोस्टुनि ते मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियरनि खे इज़ाफ़ी चार्जूं हवाले थियल। एक्सटेंट एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारे उहिदे ते हेठन ग्रेड जा असिस्टेंट इंजीनियर मुक़ररु हुजण सबबि वहिंवार रोलड़ जो शिकार बणियल आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिब वर्क्स खाते जे इख़्तियारनि पारां असिस्टेंट इंजीनियरनि ते ख़ासि नवाज़िश कंदे खेनि एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारा उहिदा इज़ाफ़ी चार्ज तौर खेनि हवाले कया विया आहिनि। केतिरनि ई महीननि खां वर्क्स खाते पारां XN1, XN2 ऐं XN3 वारे उहिदे ते एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियरनि खे मुक़ररु करण बजाए पंहिंजे मनपसंद असिस्टेंट

इंजीनियरनि खे मथियुनि उहिदनि ते मुक़रर कयो वियो आहे। उन हवाले सां मिलियल मालूमात मूजिबि एक्सन वन वारे उहिदे ते असिस्टेंट इंजीनियर वजाहत पाटोली खे इज़ाफ़ी चार्ज मिलियल आहे, जड॒हिं त एक्सन टू वारे उहिदे ते वरी असिस्टेंट एक्सन थ्री जे उहिदे जे असिस्टेंट सिंध सेक्रेटरियट जे मुख़्तलिफ़ ब्रेकनि समेत सरकारी आफ़ीसुनि, इस्पतालुनि ऐं ॿियनि सरकारी इमारतुनि में मरमती ऐं तामीराती कमनि वारा हलंदड़ मनसूबा असिस्टेंट इंजीनियर वक़्त हवाले करण सबबि समूरो वहिंवार सख़्त मुतासिर थी रहियो आहे। ज़रियनि वटां मिलियल ॼाण मूजिबि त वक़्त खाते में 14 खां 19 ताईं असिस्टेंट इंजीनियर मथे ग्रेड वारे एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर जे उहिदे ते तरक़ियूं माण जे इंतज़ार में वेठल आहिनि, पर वक़्त खाते जे अख़्तियारनि पारां ॼाणायल असिस्टेंट इंजीनियरनि जे लाइ 4 महीननि खां डीपीसी रोकी वई आहे, जंहिं करे असिस्टेंट इंजीनियर केतिरनि ई महीननि खां तरक़ियूं माण खां महरूम बणियल आहिनि। सिंध काबीना पारां मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम में वाद कैब सर्विस लाइ सेल्स टैक्स में वॾी घटाई जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि थियल सूबाई काबीना जे इजलास में अवामी सहूलियत लाइ अहम फ़ैसिला कया विया, जंहिं में पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम जे मद में 31 मई 2024 ताईं वाद कई वई। वॾे वज़ीर हिदायत कई त फ्यूल सब्सिडी जे मद में मई महीने जे लाइ 2 अरब रुपया फौरी तौर जारी कया वञनि। इजलास दौरान वॾे वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त हिन वक़्त ताईं 5,48,000 खां वधीक माण्हुनि खे फ्यूल सब्सिडी जी अदायगियूं जारी आहिनि, जॾहिं त हींअर ताईं 1.96 अरब रुपया विरिहाया विया आहिनि। काबीना पारां मोटरसाइकिल कैब सर्विस ऑनलाइन राइडिंग एप्स जे लाइ सेल्स टैक्स में बि वॾी घटाई कई वई आहे। ब्रीफिंग मूजिबि काबीना सेल्स टैक्स खे 5% मां घटाए 2% करे छॾियो आहे, जंहिं सां सालियानो 120 मिलियन रुपयनि जो माली असर पवंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो चवणु हो त हिन क़दम सां ऑनलाइन सर्विस फराहम कंदड़ सभई ड्राइवरनि खे सिधो सओं फ़ाइदो पहुचंदो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन गॾियल चटाभेटीअ वारे इम्तिहान 2024 जे लिखत वारे इम्तिहान जा नतीजा जारी करे छॾिया आहिनि, जंहिं में 70 उमेदवार कामयाब करार ॾिना विया आहिनि। कामयाब उमेदवारनि खे हिदायत कई वई आहे त 7 ॾींहनि जे अंदरि तालीमी सर्टिफिकेट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे आफ़ीस में जमा कराइनि। ॿिए मरहले में कामयाब उमेदवारनि खां इंटरव्यू वरितो वेंदो। नतीजनि वारे नोटिफिकेशन में ॼाणायो वियो आहे त कामयाब ऐं नाकाम थींदड़ उमेदवारनि जूं मार्कूं वेबसाइट ते रखियूं वयूं आहिनि। चटाभेटीअ जे इम्तिहान में 70 उमेदवारनि मां सभ खां वधीक कराची जा 15 उमेदवार कामयाब थिया आहिनि, जॾहिं त खैरपुर ज़िले जा 6, सखर जा 4, लाड़काणू 4, होटकी 4, मटियारी 3, उमरकोट 2, थरपारकर 2, ठट्टो 2, जामशोरो 2, दादू 2, बदीन 2, टंडो मामन खान 1, सांगड़ 2, नौशर फिरोज 1, उमरकोट 1, कंबर 1, जेकमाबाद ज़िले जा 2 ऐं कश्मोर ज़िले जा बि 1 उमेदवार कामयाब थिया आहिनि। पहिरें नंबर ते थरपारकर जो बशीर एवन सूमरो आहे, जंहिं 610 मार्कूं हासिल कयूं आहिनि। सिंध जा 3 तारीख़ी क़िला आलमी सकाफ़ती विरसे जी फ़हरिस्त में शामिल। यूनेस्को मीरपुर ख़ासि जे नओं कोट क़िलो, खैरपुर जो कोटडीज क़िले ऐं उमरकोट क़िले खे पंहिंजे लिस्ट में शामिल करे छॾियो आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि त अक़वाम मुतहिदा जे तालीमी, साइंसी ऐं सकाफ़ती इदारे यूनेस्को सिंध जे 3 तारीख़ी क़िलनि खे आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल करण जे लाइ इब्तिदाई लिस्ट में बाज़ाबता तौर शामिल करे छॾियो आहे। उन ॾस में यूनेस्को जे पाकिस्तानी नुमाइंदे नोटिफिकेशन पिण जारी कयो आहे, जंहिं में लाॻापियल इख़्तियारनि खे 3 क़िलनि बाबति आगाही ॾिनी वई आहे। ॿिए तरफ़ सिंध जे क़दीमी असारनि वारे खाते जे डायरेक्टर जनरल अब्दुल फताह शेख जो चवणु आहे त नओं कोट क़िलो, उमरकोट क़िलो ऐं कोट डिजी क़िलो यूनेस्को जे इब्तिदाई लिस्ट में शामिल थियण बाद 3 माॻनि खे आलमी सतह ते पज़ीराई मिलंदी। हुन चयो त तारीख़ी हंधनि खे हतमी तौर लिस्ट में शामिल करण खां अॻु खेनि इब्तिदाई फ़हरिस्त में शामिल कयो वेंदो आहे, जंहिं दौरान उन्हनि जी तारीख़ी, सकाफ़ती ऐं साइंसी इतबार खां जाइज़ो वरितो वेंदो आहे।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। मुल्क में वधंदड़ दवाउन जी कीमत ऐं जाली दवाउन जे कारोबार अवाम जी जिंदगी के सख्त खतरे में विझी छड़ियो आहे। बीमारियुनि सां विरड़ंदड़ गरीब माण्हू अॼु दवा ख़रीद करण जी सघ विञाए वेठो आहे। माहिरनि मूजिबि दवाउनि जे अघनि में बार बार वाध जो वॾो सबबु हुकूमत पारां क़ीमतुनि ते कंट्रोल ख़तमु करणु आहे। अॻु हुकूमत दवाउनि जी क़ीमतुनि खे ज़ाब्ते हेठि रखंदी हुई, पर आहिस्ते आहिस्ते दवा साज़ कंपनियुनि

खे मुकमल आज़ादी मिली वही जैखा पोए दवाउन जो कीमतूं केतराई भेरा वधियूं नतीजे तौर मरीजन लाए इलाज कराइण दुख्यो बनजी वयो गरीब लाए इलाज ख्वाब बनजी वयो अज केतराई मरीज पांजे इलाज अधमी छडे रहया आइन छाकाण त सदन आमदनी दवाउन जे खर्च अगिया बेवस बनजी वने थी केतराई वालदेन पांजे बारन जी तालीम या घर जी जरूरतुन ते खर्च घटाए दवाउन खरीद करण ते मजबूर आइन खास तौर ते दिल शुगर कैंसर ऐं गुर्दन जी बीमारियुनि में इस्तेमाल थींदड़ दवाउनि जूं क़ीमतूं आम माण्हू जे बर्दाश्त खां ॿाहिरि थी वियूं आहिनि ड्रिप ते सवालिया निशान सिहत जे शोबे सां लाॻापियल माहिरनि ऐं समाजी हलकनि जो चवणु आहे त दवा साज़ इदारनि जी निगरानी कंदड़ इदारे ड्रिप जी कारकर्दगी ते सख़्त सवाल उथनि था इल्ज़ाम आहिनि त कुझु अमलदारनि दवा साज़ कंपनियुनि सां गठजोड़ करे अवामी मुफ़ादनि जे बदिरां कार्पोरेट मुफ़ादनि खे तहफ़ुज़ ॾेई रहिया आहिनि जाली दवाउनि जे कारखाननि ख़िलाफ़ कार्रवायूं महदूद ऐं गैर असराइतियूं नज़र अचनि थियूं हुकूमत लाइ अहम सवाल जेकॾहिं रियासत पंहिंजे शहरनि खे सस्तो इलाज ऐं मयारी दवाऊं बि फराहम नथी करे सघे त पोइ उहा पंहिंजे बुनियादी ज़िमेवारी निभाइण में नाकाम सम्झी वेंदी सिहत कंहिं बि रियासत जी बुनियादी ज़िमेवारियुनि मां हिकु आहे पर मौजूदा हालतुनि में लॻे थो त हुकुमराननि लाइ अवामी मसइलनि खां वधीक अहमियत कारोबारी मफ़ादनि खे हासिल आहे माहिरनि जूं तजवीज़ूं माहिरनि ऐं समाजी तनज़ीमुनि हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त दवाउनि जी क़ीमतुनि खे ॿीहर रेग्यूलेट कयो वञे ड्रिप जी आज़ाद जांच कराई वञे करप्ट अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे जाली दवाऊं ठाहींदड़नि जे लाइ ख़ासि अदालतूं क़ाइम कयूं वञनि सरकारी अस्पतालुनि में मुफ़्त ऐं मयारी दवाऊं फराहम कयूं वञनि दवा साज़ कंपनियुनि ऐं डॉक्टरनि जी गठजोड़ रोकण जे लाइ शफ़ाफ़ कानून ठाहिया वञनि गॾियल आवाज़ जी ज़रूरत हीउ मसइलो रुगो दवाउनि जी महांगाई ताईं महदूद न आहे बल्कि लखे माण्हुनि जी ज़िंदगी ऐं मौत सां जुड़ियल आहे उन लाइ पार्लियामेंट अदलिया मीडिया ऐं सिविल सोसाइटीअ खे गॾिजी आवाज़ उथारणो पवंदो जीअं अवाम खे सिहत जहिड़ो बुनियादी हक़ फराहम थी सघे जेकॾहिं वक़्त सर क़दम न खयां विया त ग़रीब माण्हू इलाज जे खोड़ सबबि वधीक तकलीफ़ुनि ऐं मौत जे मुंहं में वञण ते मजबूर थी वेंदा हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंड अप ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: Yeah!

0: ही आहे सिंध जी दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो लई
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network. GFM 88 Network. सिंध की आवाज.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम,

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। सिक्स जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही उगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आप सिंध की है GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
5: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
6: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन। GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: आवाज एम नेटवर्क याहे सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर था भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो लई
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network. GFM 88 Network. सिंध की आवाज.
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
2: Yeah.

0: किया है सेमजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

टिन राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा। सिंध सरकार पारां कोटड़ीअ खे हैदराबाद सां मिलाइण जे लाइ नई पुल अॾण, हारिन ऐं ट्रांसपोर्टरनि जीअं मुहाणनि खे तेल सब्सिडी ॾियण, बाइका मोटरसाइकिलूं हलाईंदड़नि जे लाइ सिंध सेल्स टैक्स में छूट जो ऐलान करे छॾियो। वर्क्स एंड सर्विस खाते में नवाज़िशूं, एक्सीएन जा टे अहम उहिदा असिस्टेंट इंजीनियरनि हवाले, कार वहिंवार मुतासिर। सिंध में 50 सालनि जा बुज़ुर्ग बि वीसी शिप लाइ अहल करार, बोर्ड जूं भर्तियूं सर्च कमेटीअ हवाले। वॾे वज़ीर पारां कराची जे शहरनि खे ईद जो तोहफ़ो, शाहराह भुट्टो ईद ते ट्रैफ़िक जे लाइ खोलण जो ऐलान, रिथामी देर ऐं मयार में कोताही बर्दाश्त न कबी, वज़ीर आला सिंध। कोट डिजी उमरकोट ऐं नओकोट क़िला आलमी सकाफ़ती विरसे जी लिस्ट में शामिल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 जे इम्तिहान जा नतीजा जारी करे छॾिया, 70 उमेदवार कामयाब। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, जाली दवाउनि जो कारोबार, अवाम जे ज़िंदगियुनि सां खेॾींदड़ निज़ाम। सिंध सरकार कोटड़ीअ खे हैदराबाद सां मिलाइण जे लाइ नई पुल अॾण, हारिन ऐं ट्रांसपोर्टरनि जीअं मुहाणनि खे तेल सब्सिडी ॾियण, बाइका मोटरसाइकिलूं हलाईंदड़नि जे लाइ सिंध सेल टैक्स में छूट जो ऐलान करे छॾियो। काल्ह वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल काबीना जे इजलास में 30 अरब रूपियनि जे तरक़ियाती, फलाही ऐं इस्लाही एजेंडा जी मंज़ूरी ॾिनी वई। इजलास में कराची, ठट्टो, सजावल ऐं बदीन जे मुहाणनि खे फौरी माली रिलीफ फराहम करण जे लाइ 515 मिलियन रूपियनि जो फ्यूल सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾिनी वई। वॾे वज़ीर चयो त डीज़ल जे वधंदड़ क़ीमतुनि सबबि मच्छी जे शिकार में 20% घटिताई आई आहे, उन ई करे हज़ारे मुहाणनि जी रोज़गार खे ख़तरो पैदा थी वियो आहे। हिन स्कीम तहत 9,634 रजिस्टर्ड ॿेड़ियुनि होड़नि खे 1 खां 2 लख ताईं टारगेटेड मदद फराहम कई वेंदी। इजलास में मोटरसाइकिल मालिकनि खे मई में बि 2,000 रूपया तेल सब्सिडी ॾे 2 अरब रूपया। इजलास में परगणे में बाइका हलाईंदड़नि ते लागू सिंध सेल्स टैक्स 5 खां घटाए 2% करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई, उन सां गॾु 120 मिलियन जो फ़ाइदो थींदो। इजलास में वॾे वज़ीर माली कमेटीअ जी सिफ़ारिश ते हैदराबाद कोटड़ी विच में सिंधु दरिया ते 1.12 किलोमीटर डिघी हाईवे पुल जी इंजीनियरिंग डिज़ाइन जे लाइ 147.2 मिलियन रूपियनि जो कंसल्टेंट सर्विस लाइ ग्रांट जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वॾे वज़ीर चयो त उहा पुल मुल्क जे ॿिनि इलाइक़नि ॾांहुं अच वञ जी हल्की ऐं गरीब ट्रैफ़िक जे लाइ वॾी सहूलियत साबित थींदी। सिंध काबीना वाइस चांसलरनि जे मुक़ररीअ जे लाइ उमिरि जी हद 62 खां वधाए 65 साल करे छॾी, जॾहिं त ज़रूरी तजुर्बे खे 15 खां वधाए 20 साल कयो वियो आहे, जंहिं में घटि 10 HEC जूं तस्दीक थियल अशातूं लाज़मी करार ॾिनियूं वियूं आहिनि। काबीना सिंध जे 7 तालीमी बोर्डनि जे लाइ ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स एंड सर्विस रेग्यूलेशन 2026 जी मंज़ूरी ॾिनी, जंहिं हेठि चेयरमैन, सेशन्स ऐं ऑडिट ऑफिसर जहिड़ियूं पोज़ीशनूं हाणे मयारी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी ज़रिए भरियूं वेंदियूं। BPS 19 ऐं 20 जे लाइ उमिरि जी हद 40 खां 55 साल मुक़ररु कई वई आहे, जंहिं लाइ मास्टर डिग्री, फर्स्ट डिवीज़न ऐं 15 सालनि जो सीनियर मैनेजमेंट तजुर्बो घुर्बल हूंदो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह कराची जे अहम तरक़ियाती रिथाउनि जो तफ़सीली दौरो कयो ऐं लाॻापियल अमलदारनि खे हिदायत कई त कराची बस, रिपिड ट्रांज़िट, रेड लाइन कॉरिडोर, शाहराह भुट्टो ऐं पहलवान गोट रोड ते कम जी रफ़्तार तेज़ कई वञे, जॾहिं त सभिनी

रिथाउन में मयार ए शफाफियत के यकीनी बनाया वे वडे वजीर ऐलान किया तो शाराए भुट्टो के ईद का अग ट्रैफिक लाए खोलो वो जैके उन कराची के अवाम के लिए ईद जो तोहफो करार दिनों वडे वजीर चो तो वसीला मौजूद आन हाँ मुख्य जमीन से नतीजा नजर अचान घुर्जन कम केतर शिफ्टन में जारी रखो वे तो जी मुकर्र वक्त अंदर मुकम्मल थे शहर के जल्द रिलीफ मिले वडे वजीर मौसमियात से फ्लाई ओवर जो कम नामुकम्मल ऐसी फौरी तौर से बीहर शुरू करने की हिदायत कई यकीन दियारो तो फंड्स वसीला फराहम कया वा उन शाराए भुट्टो शहर अंदर ट्रैफिक के दबाव के घटाईन्दी एम नाइन एन फाइव शाराहन के विच में राबते के बेहतर बनाईन्दी गरी ट्रैफिक शहर का बाहर मुंतकिल जैसा कराची के रहवासन के वो रिलीफ मिलन्द वर्क्स एंड सर्विस खाते में अंधेर नगरी सूबाई बिल्डिंग डिवीजन कराची में असिस्टेंट इंजीनियर से नवाजिश सूबाई बिल्डिंग्स डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वारन टिन पोस्टों से मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियर के इजाफी चार्जू हवाले थियल एक्सटेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वे अहदे से हिछन ग्रेड जहा असिस्टेंट इंजीनियर मुकर्र होने सबब वहवार रोलड़ जो शिकार बनल है उन हवाले से मिलल जान मूजिब वर्क्स खाते के इख्तियार पारा असिस्टेंट इंजीनियर से खास नवाजिश कदे खेन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वारा अहदा इजाफी चार्ज तौर खेन हवाले कया वा केतर ही महीनों का वर्क्स खाते पारा एक्सएन वन एक्सएन टू एक्सएन थ्री वे अहदे से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मुकर्र कर बजाय पांच मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियर के मथिन अहदन से मुकर्र किया उन हवाले से मिलल मालूम मूजिब एक्सएन वन वे अहदे से असिस्टेंट इंजीनियर वजाहत पाटोली के इजाफ़ अब्दुल्ला मस्तोई एक्सएन थ्री के अहदे के इजाफी चार्ज मिलल है सिंध सेक्रेटरियट के मुख्तलिफ ब्रेकन समेत सरकारी ऑफिसन अस्पताल बेन सरकारी इमारतों में मरम्मती तामीराती कमन वारा हलंदड़ मनसूबा असिस्टेंट इंजीनियर वर्क्स हवाले करण सबब समूरो बंवार सख्त मुतासर थी रो है जरन वटा मिलल जान मूजिब तो वर्क्स खाते में चौदह का उन्वी ताई असिस्टेंट इंजीनियर मथे ग्रेड वे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अहदे से तरक्यू मान के इंसार में वेठल आन पर वर्क्स खाते के अख्तियार पारा जानायल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए चईन महीनों का डीपीसी रोकी वही है जै कर असिस्टेंट इंजीनियर केतर ही महीनों का तरक्यू मान का महरूम बनल सिंध काबीना पारा मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम में वाद कैब सर्विस लाए सेल्स टैक्स में वही घटाई की मंजूरी दई छी है सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत हेठ थियल सूबाई काबीना के इजलास में अवामी सहूलत लाए अहम फैसला कया वा जैमें पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम के मद में 31 मई 2024 ती वाद कई वही वे वजीर हिदायत कई तो फ्यूल सब्सिडी के मद में मई महीने के लिए 12 अरब रूपया फौरी तौर जारी कया वन इजलास दौरान वडे वजीर के ब्रीफिंग दीदे बुधा तो इन वक्त ही 5,48,000 का मानून के फ्यूल सब्सिडी की अदायगियों जारी आन जडे तो हिंस तई 1.96 अरब रूपया विराया व्यान काबीना पारा मोटरसाइकिल कैब सर्विस ऑनलाइन राइडिंग एप्स के लिए सेल्स टैक्स में भी वही घटाई कई वही है ब्रीफिंग मूजिब काबीना सेल्स टैक्स के 5% में घटाए 2% कर छो है जैसा सालियानो 120 मिलियन रूपये जो माली असर पवन वडे वजीर मुराद अली शाह जो चवण हो तो इन कदम से ऑनलाइन सर्विस फराहम कदड़ सवें ड्राइवर के सीधो सौ फायदो पहुंचन्द सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन गडियल चटाभेटी वे इम्तिहान 2024 के लिखित वे इम्तिहान जा नतीजा जारी कर छिया जैमें 70 उम्मीदवार कामयाब करार दिना वा कामयाब उम्मीदवार के हिदायत कई वही है तो 7 दिन के अंदर तालीमी सर्टिफिकेट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में जमा कराएं बे मरहल में कामयाब उम्मीदवार का इंटरव्यू वरतो वो नतीजन वे नोटिफिकेशन में जाना वो है कामयाब ए नाकाम उम्मीदवार जो मार्कू वेबसाइट से रखी व्यून चटाभेटी के इम्तिहान में 70 उम्मीदवार कराची जहा 15 उम्मीदवार कामयाब थे जडे खैरपुर जिले जहा 6 सखर जहा 4 लाड़कानू 4 होटकी 4 मटियारी 3 उमरकोट 2 थरपारकर 2 ठट्टो 2 जामशोरो 2 दादू 2 बदीन 2 टडोमामन खान 1 सांगड़ 2 नौशर फिरोज 1 उमरकोट 1 कंबर 1 जकमाबाद जिले जहा 2 कश्मोर जिले जहा भी 1 उम्मीदवार कामयाब थे पहरे नंबर से थरपारकर जो बशीर एवन सूमरो है जै 610 मार्कू हासिल क्यों सिंध जा टे तारीखी किला आलमी सकाफती विरसे की फहरस्त में शामिल यूनेस्को मीरपुर खास के नौ कोट किलो खैरपुर जो कोट डिज किले उमरकोट किले के पांजे लिस्ट में शामिल करे छो है उन हवाले से मिलल जा

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। मुल्क में वधंदड़ दवाउन जी कीमत ऐं जाली दवाउन जे कारोबार अवाम जी जिंदगी के सख्त खतरे में विझी छड़ियो आहे। बीमारियुनि सां विरड़ंदड़ गरीब माण्हू अॼु दवा ख़रीद करण जी सघ विञाए वेठो आहे। माहिरनि मूजिबि दवाउनि जे अघनि में बार बार वाध जो वॾो सबबु हुकूमत पारां क़ीमतुनि ते कंट्रोल ख़तम करणु आहे। अॻु हुकूमत दवाउनि जी क़ीमतुनि खे ज़ाब्ते हेठि रखंदी हुई, पर आहिस्ते आहिस्ते दवा साज़ कंपनियुनि खे मुकमल आज़ादी मिली वई, जंहिं खां पोइ दवाउनि जूं क़ीमतूं केतिरा ई भेरा वधियूं। नतीजे तौर मरीज़नि लाइ इलाज कराइण ॾुखियो बणिजी वियो। गरीब लाइ इलाज ख़्वाब बणिजी वियो। अॼु केतिरा ई मरीज़ पंहिंजे इलाज अध में छॾे रहिया आहिनि, छाकाणि त सदन आमदनी दवाउनि जे ख़र्च अॻियां बेवस बणिजी वञे थी। केतिरा ई वालदेन पंहिंजे ॿारनि जी तालीम या घर जी ज़रूरतुनि ते ख़र्च घटाए दवाऊं ख़रीद करण ते मजबूर आहिनि। ख़ासि तौर ते दिल, शुगर, कैंसर ऐं गुर्दनि जी बीमारियुनि में इस्तेमाल थींदड़ दवाउनि जूं क़ीमतूं आम माण्हू जे बर्दाश्त खां ॿाहिरि थी वियूं आहिनि। ड्रिप ते सवालिया निशान। सिहत जे शोबे सां लाॻापियल माहिरनि ऐं समाजी हलकनि जो चवणु आहे त दवा साज़ इदारनि जी निगरानी कंदड़ इदारे ड्रिप जी कारकर्दगी ते सख़्त सवाल उथनि था। इल्ज़ाम आहिनि त कुझु अमलदारनि दवा साज़ कंपनियुनि सां गठजोड़ करे अवामी मुफ़ादनि जे बदिरां कार्पोरेट मुफ़ादनि खे तहफ़ुज़ ॾेई रहिया आहिनि। जाली दवाउनि जे कारखाननि ख़िलाफ़ कार्रवायूं महदूद ऐं गैर असराइतियूं नज़र अचनि थियूं। हुकूमत लाइ अहम सवाल। जेकॾहिं रियासत पंहिंजे शहरनि खे सस्तो इलाज ऐं मयारी दवाऊं बि फराहम नथी करे सघे त पोइ उहा पंहिंजे बुनियादी ज़िमेवारी निभाइण में नाकाम सम्झी वेंदी। सिहत कंहिं बि रियासत जी बुनियादी ज़िमेवारियुनि मां हिकु आहे, पर मौजूदा हालतुनि में लॻे थो त हुकुमराननि लाइ अवामी मसइलनि खां वधीक अहमियत कारोबारी मफ़ादनि खे हासिल आहे। माहिरनि जूं तजवीज़ूं। माहिरनि ऐं समाजी तनज़ीमुनि हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त दवाउनि जी क़ीमतुनि खे ॿीहर रेग्यूलेट कयो वञे, ड्रिप जी आज़ाद जांच कराई वञे, करप्ट अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे, जाली दवाऊं ठाहींदड़नि जे लाइ ख़ासि अदालतूं क़ाइम कयूं वञनि, सरकारी अस्पतालुनि में मुफ़्त ऐं मयारी दवाऊं फराहम कयूं वञनि, दवा साज़ कंपनियुनि ऐं डॉक्टरनि जी गठजोड़ रोकण जे लाइ शफ़ाफ़ कानून ठाहिया वञनि। गॾियल आवाज़ जी ज़रूरत। हीउ मसइलो रुॻो दवाउनि जी महांगाई ताईं महदूद न आहे, बल्कि लखे माण्हुनि जी ज़िंदगी ऐं मौत सां जुड़ियल आहे। उन लाइ पार्लियामेंट, अदलिया, मीडिया ऐं सिविल सोसाइटीअ खे गॾिजी आवाज़ उथारणो पवंदो, जीअं अवाम खे सिहत जहिड़ो बुनियादी हक़ फराहम थी सघे। जेकॾहिं वक़्त सर क़दम न खयां विया त ग़रीब माण्हू इलाज जे खोड़ सबबि वधीक तकलीफ़ुनि ऐं मौत जे मुंह में वञण ते मजबूर थी वेंदा। हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंड अप। ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
0: Yeah!

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो
2: लई। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दादा मियर नई का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे हकी कड़ो लई।

0: करती है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: वीकेंड 21 अगस्त से सिर्फ और लाइफ पर।
1: और लाइफ।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम
1: 91.6। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: Yeah!

0: या है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।

0: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंडअप में। सिंध राउंडअप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंडअप संगे, मां गुलाब खान भेण।

टेस्टिंग राउंड अप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध सरकार पारां कोटड़ीअ खे हैदराबाद सां मिलाइण जे लाइ नई पुल अॾणु, हारिन ऐं ट्रांसपोर्टरनि जीअं मुहाणनि खे तेल सब्सिडी ॾियण, बाइका मोटरसाइकिलूं हलाईंदड़नि जे लाइ सिंध सेल्स टैक्स में छूट जो ऐलान करे छॾियो। वर्क्स एंड सर्विस खाते में नवाज़िशूं, एक्सीएन जा टे अहम अहुदा असिस्टेंट इंजीनियरनि हवाले, कार वहिंवार मुतासिर। सिंध में 65 सालनि जा बुज़ुर्ग बि वीसी शिप लाइ अहल करार, बोर्ड जूं भर्तियूं सर्च कमेटीअ हवाले। वॾे वज़ीर पारां कराची जे शहरनि खे ईद जो तोहफ़ो, शाहराह भुट्टो ईद ते ट्रैफ़िक जे लाइ खोलण जो ऐलान, रिथामी देर ऐं मयार में कोताही बर्दाश्त न कबी, वज़ीर आला सिंध। कोट जी उमरकोट ऐं नओकोट क़िला आलमी सकाफ़ती विरसे जी लिस्ट में शामिल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 जे इम्तिहान जा नतीजा जारी करे छॾिया, 70 उमेदवार कामयाब। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, जाली दवाउनि जो कारोबार, अवाम जे ज़िंदगियुनि सां खेॾींदड़ निज़ाम। सिंध सरकार कोटड़ीअ खे हैदराबाद सां मिलाइण जे लाइ नई पुल अॾण, हारिन ऐं ट्रांसपोर्टरनि जीअं मुहाणनि खे तेल सब्सिडी ॾियण, बाइका मोटरसाइकिलूं हलाईंदड़नि जे लाइ सिंध सेल टैक्स में छूट जो, काल्ह वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल काबीना जे इजलास में 30 अरब रूपियनि जी तरक़ियाती फलाही ऐं इस्लाही एजेंडा जी मंज़ूरी ॾिनी वई। इजलास में कराची, ठटो, सिजावल ऐं बदीन जे मुहाणनि खे फौरी माली रिलीफ फराहम करण जे लाइ 515 मिलियन रूपियनि जो फ्यूल सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾिनी वई। वॾे वज़ीर चयो त डीज़ल जे वधंदड़ क़ीमतुनि सबबि मच्छी जे शिकार में 20% घटताई आई आहे, उन ई करे हज़ारे मुहाणनि जी रोज़गार खे ख़तरो पैदा थी वियो आहे। हिन स्कीम तहत 9,634 रजिस्टर्ड ॿेड़ियुनि होड़नि खे 1 खां 2 लख ताईं टारगेटेड मदद फराहम कई वेंदी। इजलास में मोटरसाइकिल मालिकनि खे मई में बि 2,000 रूपिया तेल सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो कंदे 2 अरब रूपिया जारी कया विया। इजलास में परगणे में बाइका हलाईंदड़नि ते लागू सिंध सेल्स टैक्स 5 खां घटाए 2% करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई, उन सां गॾु 120 मिलियन जो फ़ाइदो थींदो। इजलास में वॾे वज़ीर माली कमेटीअ जी सिफ़ारिश ते हैदराबाद कोटड़ी विच में सिंधू दरिया ते 1.12 किलोमीटर डिघी हाईवे पुल जी इंजीनियरिंग डिज़ाइन जे लाइ 147.2 मिलियन रूपियनि जो कंसल्टेंट सर्विस लाइ ग्रांट जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वॾे वज़ीर चयो त उहा पुल मुल्क जे ॿिनि इलाइक़नि ॾांहुं अच वञ जी हल्की ऐं गरी ट्रैफ़िक जे लाइ वॾी सहूलियत साबित थींदी। सिंध काबीना वाइस चांसलरनि जी मुक़ररीअ जे लाइ उमिरि जी हद 62 खां वधाए 65 साल करे छॾी, जॾहिं त ज़रूरी तजुर्बे खे 15 खां वधाए 20 साल कयो वियो आहे, जंहिं में घटि में घटि 10 HEC जूं तस्दीक थियल अशातूं लाज़मी करार ॾिनियूं वयूं आहिनि। काबीना सिंध जे 7 तालीमी बोर्डनि जे लाइ ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स एंड सर्विस रेग्यूलेशन 2026 जी मंज़ूरी ॾिनी, जंहिं हेठि चेयरमैन, सेक्रेटरी, कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऐं ऑडिट ऑफिसर जहिड़ियूं पोज़ीशनूं हाणे मयारी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी ज़रिए भरियूं वेंदियूं। नए ज़ाब्तनि तहति चेयरमैन BPS 19 ऐं 20 जे लाइ उमिरि जी हद 40 खां 55 साल मुक़रर कई वई आहे, जंहिं लाइ मास्टर डिग्री, फर्स्ट डिवीज़न ऐं 15 सालनि जो सीनियर मैनेजमेंट तजुर्बो घुर्बल हूंदो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह कराची जे अहम तरक़ियाती रिथाउनि जो तफ़सीली दौरो कयो ऐं लाॻापियल अमलदारनि खे हिदायत कई त कराची बस, रिपिड ट्रांज़िट, रेड लाइन कॉरिडोर, शाहराह भुट्टो ऐं पहलवान गोट रोड ते कम जी रफ़्तार तेज़ कई वञे, जॾहिं त सभिनी रिथाउनि में मयार ऐं शफ़ाफ़ियत खे यकीनी बणायो वञे। वॾे वज़ीर ऐलान कयो त शाहराह भुट्टो खे ईद खां अॻु ट्रैफ़िक लाइ खोजियो वेंदो, जंहिंखे हुन कराची जे आवाम जे लाइ ईद जो तोहफ़ो करार ॾिनो। वॾे वज़ीर चयो त वसीला मौजूद आहिनि, हाणे मूंखे ज़मीन ते नतीजा नज़र अचण घुर्जनि, कम केतिरनि ई शिफ्टुनि में जारी रखियो वञे त जीअं मुक़रर वक़्त अंदर मुकमल थिए ऐं शहरनि खे जल्द रिलीफ मिले। वॾे वज़ीर मौसमियात ते फ्लाई ओवर जो कम नामुकमल ॾिसी फौरी तौर ते ॿीहर शुरू करण जी हिदायत कई ऐं यकीन ॾियारियो त फंड्स ऐं वसीला फराहम कया वेंदा। हुन चयो त शाहराह भुट्टो शहरांदर ट्रैफ़िक जे दबाव खे घटाईंदी ऐं M9 ऐं N5 शाहराहुनि जे विच में राब्ते खे बहितर बणाईंदी।
ॻरी ट्रैफिक शहर खां ॿाहिरि मुंतकिल थी वेंदी, जंहिं सां कराची जे रहवासियुनि खे वॾो रिलीफ मिलंदो। वर्क्स एंड सर्विस खाते में अंधेर नगरी, सूबाई बिल्डिंग डिवीजन कराची में असिस्टेंट इंजीनियर ते नवाज़िश, सूबाई बिल्डिंग्स डिवीजन जे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वारनि टिन पोस्टुनि ते मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियरनि खे इज़ाफ़ी चार्जूं हवाले थियल। एक्सटेन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वारे उहिदे ते हेठियनि ग्रेड जा असिस्टेंट इंजीनियर मुक़ररु हुजण सबब वहिंवार रोलड़ जो शिकार बणियल आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिब वर्क्स खाते जे इख़्तियारनि पारां असिस्टेंट इंजीनियरनि ते ख़ासि नवाज़िश कंदे खेनि एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारा उहिदा इज़ाफ़ी चार्ज तौर खेनि हवाले कया विया आहिनि। केतरनि ई महीननि खां वक्स खाते पारां एक्सएन 1, एक्सएन 2 ऐं एक्सएन 3 वारे उहिदे ते एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियरनि खे मुक़ररु करण बजाए पंहिंजे मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियरनि खे मथियनि उहिदनि ते मुक़ररु कयो वियो आहे। उन हवाले सां मिलियल मालूमात मूजिब एक्सएन 1 वारे उहिदे ते असिस्टेंट इंजीनियर वजाहत पाटोली खे इज़ाफ़ी चार्ज मिलियल आहे, जॾहिं त एक्सएन 2 वारे उहिदे ते वरी असिस्टेंट इंजीनियर अब्दुल्ला मस्तोई ऐं एक्सएन 3 जे उहिदे जे असिस्टेंट इंजीनियर ताहिर खान खे इज़ाफ़ी चार्ज मिलियल आहे। सेक्रेटरियट जे मुख़्तलिफ़ ब्रेकनि समेत सरकारी आफ़ीसुनि, इस्पतालुनि ऐं ॿियनि सरकारी इमारतुनि में मरमती ऐं तामीराती कमनि वारा हलंदड़ मनसूबा असिस्टेंट इंजीनियर वक़्तु हवाले करण सबब समूरो वहिंवार सख़्त मुतासिर थी रहियो आहे। ज़रियुनि वटां मिलियल ॼाण मूजिब त वक़्स खाते में 14-19 ताईं असिस्टेंट इंजीनियर मथे ग्रेड वारे एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर जे उहिदे ते तरक़ियूं माण जे इंतज़ार में वेठल आहिनि, पर वक़्स खाते जे अख़्तियारनि पारां ॼाणायल असिस्टेंट इंजीनियरनि जे लाइ 4 महीननि खां डीपीसी रोकी वई आहे, जंहिं करे असिस्टेंट इंजीनियर केतिरनि ई महीननि खां तरक़ियूं माण खां महरूम बणियल आहिनि। सिंध काबीना पारां मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम में वाद कैब सर्विस लाइ सेल्स टैक्स में वॾी घटाई जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सूबाई काबीना जे इजलास में अवामी सहूलियत लाइ अहम फ़ैसिला कया विया, जंहिं में पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम जे मद में 31 मई 2024 ताईं वाद कई वई। वॾे वज़ीर हिदायत कई त फ्यूल सब्सिडी जे मद में मई महीने जे लाइ 12 अरब रुपया फौरी तौर जारी कया वञनि। इजलास दौरान वॾे वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त हिन वक़्त ताईं 5,48,000 खां वधीक माण्हुनि खे फ्यूल सब्सिडी जी अदायगियूं जारी आहिनि, जॾहिं त हींअर ताईं 1.96 अरब रुपया विरिहाया विया आहिनि। काबीना पारां मोटरसाइकिल कैब सर्विस ऑनलाइन राइडिंग एप्स जे लाइ सेल्स टैक्स में बि वॾी घटाई कई वई आहे। ब्रीफिंग मूजिब काबीना सेल्स टैक्स खे 5% मां घटाए 2% करे छॾियो आहे, जंहिं सां सालियानो 120 मिलियन रुपयनि जो माली असर पवंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो चवण हो त हिन क़दम सां ऑनलाइन सर्विस फराहम कंदड़ सभई ड्राइवरनि खे सिधो सओं फ़ाइदो पहुचंदो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन गॾियल चटाभेटीअ वारे इम्तिहान 2024 जे लिखित वारे इम्तिहान जा नतीजा जारी करे छॾिया आहिनि, जंहिं में 70 उमेदवार कामयाब करार ॾिना विया आहिनि। कामयाब उमेदवारनि खे हिदायत कई वई आहे त 7 ॾींहनि जे अंदरि तालीमी सर्टिफिकेट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे आफ़ीस में जमा कराइनि। ॿिए मरहले में कामयाब उमेदवारनि खां इंटरव्यू वरितो वेंदो। नतीजनि वारे नोटिफिकेशन में ॼाणायो वियो आहे त कामयाब ऐं नाकाम थींदड़ उमेदवारनि जूं मार्कूं वेबसाइट ते रखियूं वयूं आहिनि। चटाभेटीअ जे इम्तिहान में 70 उमेदवारनि मां सभ खां वधीक कराची जा 15 उमेदवार कामयाब थिया आहिनि, जॾहिं त खैरपुर ज़िले जा 6, सखर जा 4, लाड़काणू 4, होटकी 4, मटियारी 3, उमरकोट 2, थरपारकर 2, ठट्टो 2, जामशोरो 2, दादू 2, बदीन 2, टडोमामन खान 1, सांगड़ 2, नौशर फिरोज 1, उमरकोट 1, कंबर 1, जिकमाबाद ज़िले जा 2 ऐं कश्मोर ज़िले जा बि 1 उमेदवार कामयाब थिया आहिनि। पहिरें नंबर ते थरपारकर जो बशीर एवन सूमरो आहे, जंहिं 610 मार्कूं हासिल कयूं आहिनि। सिंध जा 3 तारीख़ी क़िला आलमी सकाफ़ती विरसे जी फ़हरिस्त में शामिल। यूनेस्को मीरपुर ख़ास जे नओं कोट क़िलो, खैरपुर जो कोटडीज क़िले ऐं उमरकोट क़िले खे पंहिंजे लिस्ट में शामिल करे छॾियो आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिब त अक़वाम मुतहदा जे तालीमी, साइंसी ऐं सकाफ़ती इदारे यूनेस्को सिंध जे 3 तारीख़ी क़िलनि खे आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल करण जे लाइ इब्तिदाई लिस्ट में बाज़ाबता तौर शामिल करे छॾियो आहे। उन ॾस में यूनेस्को जे पाकिस्तानी नुमाइंदे नोटिफिकेशन पिण जारी कयो आहे, जंहिं में लाॻापियल इख़्तियारनि खे टिन्ही क़िलनि बाबति आगाही ॾिनी वई आहे। ॿिए तरफ़ सिंध जे क़दीमी असारनि वारे खाते जे डायरेक्टर जनरल अब्दुल फताह शेख जो चवण आहे त नओं कोट क़िलो,
उमरकोट किलो ऐं कोट डिजी किलो यूनेस्को जे इब्तिदाई लिस्ट में शामिल थियण बाद टिन्ही माॻनि खे आलमी सतह ते पज़ीराई मिलंदी। हुन चयो त तारीख़ी हंधनि खे हतमी तौर लिस्ट में शामिल करण खां अॻु खेनि इब्तिदाई फ़हरिस्त में शामिल कयो वेंदो आहे, जंहिं दौरान उन्हनि जी तारीख़ी, सकाफ़ती ऐं साइंसी इतबार खां जाइज़ो वरितो वेंदो आहे।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। मुल्क में वधंदड़ दवाओं की कीमत ऐं जाली दवाओं के कारोबार अवाम की जिंदगी के सख्त खतरे में विझी छोड़ो है। बीमारियों से विढ़ंदड़ गरीब मानू अज दवा खरीद करण की सघ विञाए वेठो है। माहिरन मूजिब दवाओं के अघ में बार बार वाध जो वॾो सबब हुकूमत पारां कीमतुनि ते कंट्रोल खत्म करण आहे। अॻु हुकूमत दवाउनि जी कीमतुनि खे ज़ाब्ते हेठि रखंदी हुई, पर आहिस्ते आहिस्ते दवा साज़ कंपनियुनि खे मुकमल आज़ादी मिली वई, जंहिं खां पोइ दवाउनि जूं कीमतूं केतिरा ई भेरा वधियूं। नतीजे तौर मरीज़नि लाइ इलाज कराइण ॾुखियो बणिजी वियो। गरीब लाइ इलाज ख़्वाब बणिजी वियो। अॼु केतिरा ई मरीज़ पंहिंजे इलाज अध में छॾे रहिया आहिनि, छाकाणि त सदन आमदनी दवाउनि जे ख़र्च अॻियां बेवस बणिजी वञे थी। केतिरा ई वालदेन पंहिंजे ॿारनि जी तालीम या घर जी ज़रूरतुनि ते ख़र्च घटाए दवाऊं ख़रीद करण ते मजबूर आहिनि। ख़ासि तौर ते दिल, शुगर, कैंसर ऐं गुर्दनि जी बीमारियुनि में इस्तेमाल थींदड़ दवाउनि जूं क़ीमतूं आम माण्हू जे बर्दाश्त खां ॿाहिरि थी वियूं आहिनि। ड्रिप ते सवालिया निशान। सिहत जे शोबे सां लाॻापियल माहिरनि ऐं समाजी हलकनि जो चवण आहे त दवा साज़ इदारनि जी निगरानी कंदड़ इदारे ड्रिप जी कारकर्दगीअ ते सख़्त सवाल उथनि था। इल्ज़ाम आहिनि त कुझु अमलदारनि दवा साज़ कंपनियुनि सां गठजोड़ करे अवामी मुफ़ादनि जे बदिरां कार्पोरेट मुफ़ादनि खे तहफ़ुज़ ॾेई रहिया आहिनि। जाली दवाउनि जे कारखाननि ख़िलाफ़ कार्रवायूं महदूद ऐं गैर असराइतियूं नज़र अचनि थियूं। हुकूमत लाइ अहम सवाल। जेकॾहिं रियासत पंहिंजे शहरनि खे सस्तो इलाज ऐं मयारी दवाऊं बि फराहम नथी करे सघे त पोइ उहा पंहिंजे बुनियादी ज़िमेवारी निभाइण में नाकाम सम्झी वेंदी। सिहत कंहिं बि रियासत जी बुनियादी ज़िमेवारियुनि मां हिकु आहे, पर मौजूदा हालतुनि में लॻे थो त हुकुमराननि लाइ अवामी मसइलनि खां वधीक अहमियत कारोबारी मफ़ादनि खे हासिलु आहे। माहिरनि जूं तजवीज़ूं। माहिरनि ऐं समाजी तनज़ीमुनि हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त दवाउनि जी क़ीमतुनि खे ॿीहर रेग्यूलेट कयो वञे, ड्रिप जी आज़ाद जांच कराई वञे, करप्ट अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे, जाली दवाऊं ठाहींदड़नि जे लाइ ख़ासि अदालतूं क़ाइमु कयूं वञनि, सरकारी अस्पतालुनि में मुफ़्त ऐं मयारी दवाऊं फराहम कयूं वञनि, दवा साज़ कंपनियुनि ऐं डॉक्टरनि जी गठजोड़ रोकण जे लाइ शफ़ाफ़ कानून ठाहिया वञनि। गॾियल आवाज़ जी ज़रूरत। हीउ मसइलो रुॻो दवाउनि जी महांगाई ताईं महदूद न आहे, बल्कि लखे माण्हुनि जी ज़िंदगी ऐं मौत सां जुड़ियल आहे। उन लाइ पार्लियामेंट, अदलिया, मीडिया ऐं सिविल सोसाइटीअ खे गॾिजी आवाज़ उथारणो पवंदो, जीअं अवाम खे सिहत जहिड़ो बुनियादी हक़ फराहम थी सघे। जेकॾहिं वक़्त सर क़दम न खयां विया त ग़रीब माण्हू इलाज जे खोड़ सबबि वधीक तकलीफ़ुनि ऐं मौत जे मुंह में वञण ते मजबूर थी वेंदा। हुयो हिन वक़्त जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलह निगहबान।